0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirci, burka.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: कटी? कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
4: जबरदस्त ट्रैक्स।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
3: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: और थोड़े से लम्हे के बाद दूर होकर हम भी पास आ गए आपके। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक। और बस आखिरी हफ्ता भी नहीं कह सकते, ये मिक्स हफ्ता है जून और जुलाई महीने का। और आज का दिन ना कुछ अलग था लगा क्या अभी आपको? अगर आप मुझे गाड़ियों से सुन रहे हो और एकदम रास्ते थोड़े खाली खाली से लग रहे हैं, लग रहा है ना, मतलब वो डिफरेंस बहुत महसूस हो रहा है कि भाई अच्छा हाँ यार आफरीन सही कह रही हो, आसपास में थोड़ी सी ट्रैफिक कम है और आज लगता है कि यार अच्छा यार तो यार 5 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंचने वाले, ऐसे ही कुछ होगा शायद, क्योंकि यार स्कूल्स जो है वो काफी कुछ कुछ बंद हो गई है एंड बच्चे वेकेशंस पर काफी निकल चुके हैं। तो यार अब मेरे ख्याल से ये वो 2 महीने हैं जब हमारे कतर में थोड़ा सा हल्का सा सन्नाटा रहता है रस्ते पर, सुबह में वो स्कूल की बसेस की वो रौनक नहीं रहती है मैं कह सकती हूँ। लेकिन कोई ना यार, ये गर्मी का वक्त, बच्चे जहां पर भी है, घर पर है, नानी के घर पर है, अपने दादी के घर पर है, होम टाउन जा रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं, बस बहुत सारा एंजॉय करके और एनर्जी लेकर वापस आओ, ठीक है ना। फिलहाल तो यार बहुत सारी एनर्जी के साथ में वीकेंड की मैं आ गई हूं यहां पर राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, आपकी सुबह वाली आदत माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। एंड नकाश अजीज इज राइट हियर, फैन से ये गाना जबरा फैन ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रोड बैंड का ये गाना, विच एब्सोल्युटली फैसिनेटेड अस बैक इन 90s जब हमने ये गाना पहली बार देखा था. यार पानी में कैसे शूट किया वो, द लिटिल वर्जन ऑफ आर सेल्स ऑलवेज वंडर्ड कि नहीं यार क्या मैजिक है, ये कैसे हो सकता है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और मैजिक तो अब मैं चलाऊंगी ना गानों के साथ में यहाँ पर आपके मॉर्निंग्स को एकदम जबरदस्त बनाने के लिए. लेकिन उससे पहले यार वक्त हो चला है कि जरा हमारे तापमान का भी हालचाल देख ले.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: वेल वेदर ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आज का वो जाएगा सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक है. सिर्फ तो ऐसी कह रही है आफरीन जैसे आइसलैंड में रहते हैं हम, और ये तो हमारे लिए ठंडी वाला वेदर है. नहीं नहीं नहीं, 42 है, नॉर्मल है अपने लिए तो ठीक ही है. मिनिमम 30 तक जाएगा शाम के वक्त. कल मैंने ये देखा कि भाई पसीने निकलने लग गए हैं अब शाम के वक्त भी, रात के वक्त भी. दिन में तो यार ठीक है क्योंकि ह्यूमिडिटी आज जो है 50% तक है. हवाएं भी हल्की फुल्की सी चल रही है, नहीं के बराबर है, 8 किलोमीटर पर आवर पर है. ऑल इन ऑल ठीक है, आदत हो गई है और बस और एक दो महीना है निकाल लेंगे. तब तक के लिए यहाँ पर गाने हैं ना हमारे पास.
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813.
0: Yes, Sanju is here to entertain us. यानी संजू राठौड़ की आवाज में ये गाना. And संजू के गानों में ना मुझे एक मजा ही आता है कि यार म्यूजिक भी अच्छी है, आवाज अच्छी है, लेकिन लिरिक्स मजेदार होते हैं यार, है ना. अब देखो बैंगल्स बांगड़ी पे गाना. Enjoy it on the cheese hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: vivo. Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ आयुष्मान खुराना की आवाज में. आपके लिए मैं काफी हूँ यहाँ पर राइड को जबरदस्त बनाने के लिए. और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वीकेंड में कतर में लोग खुशबुओं में इस तरह से डूब गए थे कि हर जगह मुझे आइदर कोई खुशबुओं की बातें करते नजर आ रहा था या फिर कोई खुशबू की बातें ये खुशबू में नहाया हुआ नजर आ रहा था. एंड ये मैजिक हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ तीबल हजम. तीबल हजम क्या है भाई? वो जो लोग हैं जो सोच रहे वंडर कर रहे कि व्हाट इज आफ्टर टॉकिंग अबाउट, इट इज द परफ्यूम एग्जीबिशन इन कतर जो हर एडिशन के साथ में इतना ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है. लाइक It's a craze. The perfume craze is getting larger, bigger every time. और of course, why not? क्योंकि यार ये जिस तरह से होता है ना ये एग्जीबिशन जहाँ पर आपको कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, सऊदी के कुछ ब्रांड्स होते हैं और कहीं के कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कतर में मौजूद नहीं है और वो सिर्फ इसी एग्जीबिशन के दौरान आपको यहाँ पर मिलते हैं. यस, आपके भी इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे रील्स आई एम श्योर आए रहेंगे इसके बारे में. लेकिन वॉट इज इम्पॉर्टेंट ये हमें पता चल रहा है कि भाई बहुत लंबी लंबी लाइंस है. लेकिन आज और कल का दिन इज फैमिली डे. सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इट्स अ फैमिली ओनली डे. शायद उम्मीद है फिंगर्स क्रॉस कि थोड़ी सी भीड़ अब कम होगी इस वक्त पर. सो यस, डोंट मिस आउट द चांस कि आपने अगर लेना है परफ्यूम वगैरह का स्टॉक करना है, दिस इज एब्सोल्युटली द राइट टाइम. तीबल हजम एट अल हजम मॉल. मैं हूँ आफरीन आपके साथ यशिता शर्मा फरहान अख्तर शंकर महादेवन की आवाज में. हो जाए ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मैच ये हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्कट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: जावेद अली की खूबसूरत सी आवाज राइट ऑन मिर्ची और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:06 की तरफ और तुरंत बात लेकर आती हूँ भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्या हालचाल चल रहा है। यू आर स्टे ट्यून्ड विद मी और मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्च, ये आपके साथ में हूँ मैं, यानी चलो फिर खेल जगत से जरा क्या खबर है देखते हैं। देखिए फुटबॉल फैंस, वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज ऑफिशियली अब खत्म हो चुका है और अब शुरू हो रहा है असली नॉकआउट का ड्रामा। देखिए कल के सबसे बड़े रिजल्ट्स की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हरा कर ग्रुप एल में अपनी जगह बिल्कुल मजबूत की है। क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से मात देकर राउंड ऑफ 32 का टिकट पक्का कर लिया है। पोर्चुगल ने कोलंबिया के साथ 1-1 का ड्रॉ खेला और ग्रुप विनर्स के तौर पर आगे बढ़ गया। और सबसे इमोशनल कहानी मेरे ख्याल से रही है डीआर कांगो की, जिसने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप हिस्ट्री की अपनी पहली जीत और पहला नॉकआउट क्वालिफिकेशन हासिल की है। वेल अब शुरू होने वाला है राउंड ऑफ 32, अब डू और डाई का फेस चलने वाला है। आज का पहला नॉकआउट मुकाबला होगा ग्रुप ए के रनर अप और ग्रुप बी के रनर अप के बीच में। देखिए अब कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, 90 मिनट या में एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज, जो जीतेगा ना वही आगे बढ़ने वाला है और जो हारेगा टाटा बाय बाय कहानी खत्म। So well, अब देखते हैं कि कौन ये स्टेज से आगे बढ़ते जाता है। फिलहाल आई वॉन्ट टू नो हु आर यू रूटिंग फॉर। व्हाट्सएप नंबर है 5000186, फटाफट से मैसेज करो एंड लेट्स कनेक्ट हियर और बताइए भाई वो कौन सी टीम है जिसको आप इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। चलिए तब तक के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जिगर सरैया और प्रिया सरैया की आवाज़ में। मीनवाइल माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। उन मिर्ची इट्स हॉट। We'll be right back.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने की?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाज साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोलो कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, हमारे 90s की ग्लैमरस हीरोइन करिश्मा कपूर को हमने प्यार की कहानियों में देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है, डांस नंबर्स करते हुए देखा है, लेकिन इस बार ना रोमांस ना ग्लैमर, सिर्फ एक मर्डर केस में आप देखने वाले हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड जी हाँ, करिश्मा कपूर इज बैक विद ब्राउन, एक डार्क क्राइम थ्रिलर जहां वो नजर आ रही है रीटा ब्राउन के किरदार में, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली की यंग वुमन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन लीड कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वो अपने पर्सनल ट्रॉमा और इमोशनल बैगेज से भी जूझ रही होती है। देखिए, सीरीज की कहानी कोलकाता के बैकड्रॉप में बिल्कुल सेट है, जहां हर कैरेक्टर के पास एक राज है, हर रिलेशनशिप में एक ट्विस्ट है और हर क्ल्यू आपको एक नए सस्पेक्ट तक ले जाता है। अब इसमें करिश्मा कपूर के साथ सूर्य शर्मा, हेलन, सोनी राजदान और के रायना भी आपको अहम किरदारों में नजर दिखेंगे। अगर आपको देखिए स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर्स, लेयर्ड कैरेक्टर्स और सस्पेंस से भरी इन्वेस्टिगेशंस पसंद है ना, देन डेफिनेटली Z5 पर स्ट्रीमिंग ब्राउन आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

से भरी इन्वेस्टिगेशंस पसंद है ना, देन डेफिनेटली Z5 पर स्ट्रीमिंग ब्राउन आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
5: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
4: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
4: Catch Officer Brown.
7: Officer Brown.
4: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
8: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
9: Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
10: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।

0: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
1: बहुत कुछ होगा।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन,
4: इट्स हॉट
3: 89.6
2: मिर्ची।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: मधुमति बागची की आवाज में ये गाना राइट योर ऑन मिर्ची और शरारत करने के मूड में तो हम भी हैं फिलहाल. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 7:39 की तरफ और हमारा इशारा उस तरफ जहां पर हर रोज होता है इस टाइम पर जहां हम और आप मिलकर गेम खेलते हैं. याद है ना भाई, वीकेंड पर भूल तो नहीं गए कि यार आफरीन गेम शेम खिलाती है इस वक्त पर जो कहलाता है लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. तो बस आज मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इजी पीजी डायलॉग ही मैं लेकर आई हूँ. आपने गेस करना है कि ये कौन सी मूवी से है. आवाज तो यूं पहचान लोगे आप. सो हियर इट गोज.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया. अच्छा साहब, फिर गुस्सा आता है तो आवाज लाउड हो जाती है. अच्छा हमको सिखा रही है. तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया. अच्छा
0: ओके बस इससे ज्यादा नहीं. मेरे ख्याल से दिस इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड विच मूवी दिस इज. पहचान लिया है तो 5000186 इज माई नंबर. व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर. आइए फटाफट से मैसेज कीजिए और बताइए भाई आफरीन जो है ये कौन सी मूवी की बात कर रही है. मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है मीट ब्रदर्स डीप मनी और नेहा भासन की आवाज में. ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ नंदिनी श्रीकार और अरिजीत सिंह की आवाज में। ये गाना अभी आपने सुना जी। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। वेल बहुत ही आसान सा मैंने सवाल पूछा था ऑनेस्टली, और आपने गेस करना था कि आखिरी आफरीन किसकी आवाज या सुना रही है, कौन सी मूवी से सुना रही है। सो हियर इट गोज।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट।
2: तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा साहब, फिर गुस्सा आता है तो आवाज लाउड हो जाती है। अच्छा हमको सिखा रही है।
1: अच्छा समझ आ रही है आपको। बड़े मजे की मूवी थी यार ये। कौन सी मूवी है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर। हुजैब का मैसेज है, अब्दुल रजाक का मैसेज है यहाँ पर, देन यहाँ पर अब राइट नाम शाजी ने मैसेज किया है, शाजी अब्दुल करीम ने मैसेज किया है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, देन आई हैव योर सिद्रा मैसेजिंग मी, एंड देन आई ऑल्सो हैव योर भाई इनका नाम नहीं लिखा है, आई थिंक सो सद्दाम इज हिज नेम। हाँ जी, तो ऐसे बहुत सारे, जुबैर का मैसेज आया है, देन आई हैव सो मैनी, मुकुल का मैसेज आया है। सबका ये कहना है कि आफरीन ये जो तुम डायलॉग सुना रही हो ये है पीके मूवी से, दैट इज आमिर खान और अनुष्का शर्मा की ये मूवी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए पीके में एक मजेदार बात ये थी कि हमने देखा है ना आमिर खान को बहुत ही अलग अलग ड्रेसेस में, मतलब बहुत मिक्स एंड मैच था, कभी घाघरे के ऊपर ये ब्लेजर पहन रहे हैं, कुछ अजीब और गरीब अंदाज का इनका पूरा अटायर था। मजे की बात तो ये थी कि ये कपड़े जो थे उनके पब्लिक से आसपास से मांगे हुए, रैंडमली कलेक्ट किए हुए थे, इसीलिए ऐसे लग रहे थे। मतलब जो ऑथेंटिसिटी है भाई, आफ्टर ऑल इट इज आमिर खान, हर चीज जिस तरह से होनी चाहिए परफेक्टली वैसे करने की कोशिश करते हैं और वो बखूबी करते हैं। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में चले पीके का एक गाना सुनते हैं। और मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट
3: रहना।

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। आफरीन का साथ है आपके साथ में और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 8:03 की तरफ। और थोड़ी ही देर में इस गाने के उस पार एक ऐसे खबर लेकर आ रही हूँ उन लोगों के लिए जो अब ये हफ्ते में या जस्ट एनी टाइम सून इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं। सो ट्रैवल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी यानी माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

देखो चॉकलेट्स खरीद लिए, खजूर खरीद लिए, परफ्यूम्स भी खरीद लिए हैं और पैकिंग भी लगभग हो ही गई है, जाने की पूरी तैयारी है ना, तो फिर यार ये भी एक तैयारी कर लो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और इंडिया जाने की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल अपडेट आई है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। देखिए इंडिया ने एयर सुविधा 2.0 रीलॉन्च किया है। अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना बिल्कुल मैंडेटरी किया गया है। वेल ये स्टेप अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट हुए एबोला वायरस आउटब्रेक के बाद प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग को और स्ट्रांग बनाने के लिए किया क्या है। देखिए हम सबसे बड़ी गलती ना यही करते हैं कि एयरपोर्ट पहुंचकर फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जैसे है ना काफी डिले हो जाती है इमिग्रेशन के लिए और अननेसेसरी ना स्ट्रेस हो जाता है। देखिए स्मार्ट ट्रैवलर हैक तो यही है ना, दैट फ्लाइट से पहले ही या वेब चेक इन के टाइम पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। अथॉरिटीज के मुताबिक इसे अराइवल से 24 आवर्स पहले तक सबमिट किया जा सकता है। देखिए पासपोर्ट डिटेल्स, फ्लाइट नंबर और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन रेडी रखिए ताकि आपका प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहे और आप ना घर पर पहुंचने की एक बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, अपनों से मिलने की बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट, तो वो सारी चीज में ना बिल्कुल डिले नहीं हो। उसके बाद क्या, बस आपके वेकेशंस एंजॉय कीजिएगा। और हाँ जी, अब लौटते वक्त ना खाली हाथ जरूर बिल्कुल नहीं आना, कुछ मिठाई उठाई अपने शहर की स्पेशलिटी मेरे लिए जरूर लेके आइए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirci, murga.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनुआ बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगता
3: नहीं
2: है?
3: वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा
3: वाला,
2: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
3: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

हम बातों में उलझाएंगे नहीं, बल्कि आपका सफर और भी आसान करेंगे। वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग, सिंपली आफरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, आई एम श्योर आप लोग की तैयारियां चल रही है अपने अपने होम टाउन जाने की, वेकेशन मनाने के लिए। तो भाई वहां जाकर क्या करोगे? शॉपिंग करोगे, घूमोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे? तो बस उसके लिए आपको यहाँ से रियाल्स तो भेजने पड़ेंगे ना। तो बस क्या एक्सचेंज रेट लेकर आ गई मैं आई पे के, आपके लिए कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 25.90, वही जनाब पाकिस्तानी रुपीस 76.80, बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.90 पर है, श्रीलंकन रुपीस 92.44 एंड नेपाली रुपीस 41.38। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन पर, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब...

0: और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ इस वक्त पर गेम ना खेलूं? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और यहाँ पर तो हम लोगों को टाटा बाय बाय कह रहे हैं कि भाई जाइए, वेकेशन पर जाइए. बट आई हैव मैसेज हियर फ्रॉम प्रिंसन बैक इन कतर. तो वेलकम बैक प्रिंसन भाई. नाइस टू हियर योर वॉइस. शुक्रिया. बट नाइस टू सी योर मैसेज. एंड सिंस प्रिंसन यहाँ पर आ गए, जो हमेशा आकर हमारे सवालों का जवाब देते हैं, तो बता देता हूँ भाई, हमारा अभी सवाल जवाब का थोड़ा सा सिलसिला यहाँ बदल गया है. हम यहाँ पर मूवीज की कहानी नहीं सुना रहे हैं, लेकिन हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ आवाज़ें सुना रहे हैं. यानी किस कोई एक शख्सियत के इंटरव्यू सुना रहे. तो यू हैव टू गेस हु एम आई टॉकिंग अबाउट, हु इज़ दिस पर्सन. सो हियर इट गोज. रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो.
1: So I asked him the same question. I said, will you be a protective call dad? Like, how do you feel if she has a boyfriend and all? And he gave me such a, jo wise aap mujhe keh rahe ho, he gave me an evil, I was surprised. He said, no, I think our job as parents is not to restrict her from anything. We'll teach her to be able to choose for herself what's right for her and what's wrong.
0: All right, I think so. The background music quite gave away, right? बताइए किसकी आवाज थी. 5000 1896. यहाँ messages आने on this note शुरू हो चुके हैं. चार्ली का मैसेज आया है विच इज़ अ राइट आंसर. मोहम्मद इसफान का मैसेज आया है विच इज़ अ रॉन्ग आंसर. लेट मी टेल यू, यहाँ पर वो जो एक्ट्रेस है टॉकिंग अबाउट हर चाइल्ड हु इज़ अ न्यू मॉमी. सो यू हैव टू टेल मी. यहाँ पर रोहित का भी मैसेज आया है जो मुझे लग रहा है यहाँ पर गलत जवाब है. बताइए किस. मजा आ गया, देखो मजा ही आ गया. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. ये भी बताया भाई, द बैकग्राउंड म्यूजिक गेव अवे द आंसर. बस इतना काफी है. रमन महादेवन की आवाज में खोलो खोलो अपने दिमाग को, खोलो और जवाब दो. तब तक के लिए माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
2: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट था, लंबे से बाल वाला।
1: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100-on-100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
3: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
4: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: श्रुति हसन की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है उन्मिर्ची मॉर्निंग्स और बड़े कंफ्यूज तो करवाने मुझे आपको इतना मजा आता है कि यार बाय गॉड क्या ही बताऊं। वेल बात हो रही है यहाँ पर वो गेम की, बॉलीवुड के गेम की, जहाँ पर मैंने आपको एक किरदार, एक एक्टर एक्ट्रेस, हूएवर इट कुड बी, डायरेक्टर, एनीवन, बॉलीवुड का कोई तो एक शख्सियत है जिसकी मैंने आवाज़ सुनाई है। आपने गेस करना है कि आखिर ये आवाज़ है किसकी, और इतना बड़ा हिंट मैंने दिया था कि भाई थोड़ा सा ध्यान बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी दे दो। इट गेव अवे बट स्टिल आई हैड रॉन्ग answers. So let's see, ये आवाज है किसकी?
1: So I asked him the same question. I said, will you be a protective call dad? Like, how do you feel if she has a boyfriend and all? And he gave me such a, जो वाइज आप मुझे कह रहे हो, he gave me an even, I was surprised. He said, no, I think our job as parents is not to restrict her from anything. We'll teach her to be
0: All right. यहाँ पर messages फिर से आने शुरू हो गए हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया था, और मेरे hint के बाद आप सही जवाब दे रहे हैं। जैसे रोहित का मैसेज, पहले रकुल प्रीत आता है, अब ये कहते हैं ये कियारा अडवाणी है। वैसे ही यहाँ पर मनीष का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, ताहिर का मैसेज, चार्ली का मैसेज, एंड देन आई हैव खालिद, एंड यस सो मेनी मोर सेइंग दैट यस नाउ आफरीन वी अंडरस्टैंड ये है कियारा अडवाणी। और हाँ जी, नई नई ममा बनी है, और बॉलीवुड में ऐसे कई बार हुआ है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि मूवी के सेट पर प्यार हो जाए इन रियल लाइफ, रील शूटिंग करते करते, और फिर शादी कर ले। जैसे सिद्धार्थ और कियारा, दे फेल इन लव व्हेन दे वर शूटिंग फॉर शेरशाह। सिमिलरली क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, ये भी गोलियों की रासलीला रामलीला में यहाँ पर दे स्टार्टेड फॉलिंग फॉर ईच अदर। इनफैक्ट अगर पहले जाए ना 70s की बात करें तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, या जया भादुरी कह सकती हूँ मैं उस वक्त पर, जब ये गुड्डी मूवी में एक साथ काम कर रहे थे, दैट्स व्हेन दे केम क्लोजर। एंड सिमिलरली ऋषि कपूर और नीतू कपूर भी खेल खेल में जब ये पहली बार दे वर शूटिंग टुगेदर, दैट्स व्हेन दे फेल इन लव, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग। डू यू रिमेंबर एनी सच एक्टर एक्ट्रेस जो शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ दे स्टार्टेड डेटिंग एंड देन दे इवेंचुअली गॉट मैरिड? बताइए हाँ मुझे इफ यू नो एनीवन। 5001896 व्हाट्सएप नंबर है। गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं, और जहां हमने कियारा अडवाणी की बात की है तो माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

ये फ्लाइट्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इस वजह से हिचकिचा रहे हो वैकेशन पर जाने से? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और क्या आप वो सोच रहे हो कि भाई मन तो बहुत है घर जाने का, लेकिन यार फ्लाइट्स कहाँ है, इतनी बढ़ गई है रेट्स भी और फ्लाइट कम भी है. तो लेट मी टेल यू, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू. और वो कुछ इस तरह से है दैट अब 1st of July से और भी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है 5 वो खुल रही है, जिसमें हमारा अकासा एयर भी आता है. यस, उसके साथ साथ रॉयल एयर मैरोक है, फिलिपीन एयरलाइंस है, अकासा एयर है, एंड देन मलेशिया एयरलाइंस एंड आइबेरिया भी है, जो 2nd or 3rd July से ये शुरू होने वाली है. सो वेल, अकासा जैसे इंडिया का एयरलाइंस है, तो भाई यू हैव सम मोर फ्लाइट ऑप्शंस एडेड नाउ, एंड हो सकता है अब फेयर्स भी थोड़े से बेटर हो जाए. सो यू हैव टू कीप अ लुक ऑन दैट. वेल, आपको ये बात तो बता दूं कि मार्च में हमारा एयर स्पेस जरा बंद हो गया था, और उसके बाद में 21 अप्रैल के बाद 31 एयरलाइंस हमद से ऑपरेशंस रिज्यूम कर चुकी है, और जुलाई में अब ये नंबर 36 हो जाएंगे. सो वेल, दिस इटसेल्फ सेज दैट इकोसिस्टम की रिकवरी हो रही है और ग्लोबल कनेक्शन अब और भी ज्यादा बढ़ रहा है, एंड एट द राइट टाइम, वो भी वेकेशन के टाइम पर. और क्या चाहिए, बस मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: वेल, आईपी सिंह जॉनी डा गांधी की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है ये गाना, क्योंकि यार मतलब हमारा 90s का ऐसा गाना चुनरी जिससे हमारे इमोशंस जुड़े हैं, तो बस हमें पसंद आना चाहिए कि नहीं. वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, मिलेनियल लड़की जो 90s के नशे में इतनी धुत रहती है, हर चीज को उससे कनेक्ट करती है. सो वेल, फिलहाल तो यार अगले गाने की तरफ बढ़ रही हूँ, वो भी हमारे 2000 की एरा का ही गाना है. तो भैया आजकल तो मूवीज भी यही करते हैं ना, हमारी एरा की उठा के ये आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 करके पेश करते हैं. सो उसके तरफ बढ़ने से पहले मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 9:08 की तरफ, और विशाल शेखर के शांत तुलसी कुमार की आवाज में अगला गाना ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
2: Authentic, original, and better than our rivals.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एड्रेस दे अपना, कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप, कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

तेज और धीरे धीरे मेरे जाने का वक्त नजदीक आ रहा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बस धीरे धीरे मतलब और आधे घंटा है यहाँ पर बातें होती रहेगी, लेकिन यस बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में 2026 जो इस वक्त पर US, मेक्सिको, कनाडा में मिलकर वहाँ पर हो रहा है। एंड अब क्या है ना, ग्रुप स्टेज ऑफिशियली खत्म हो चुका है, अब शुरू हो रहा है असली नॉकआउट का ड्रामा माई फ्रेंड। कल के सबसे बड़ी रिजल्ट की अगर बातें करें तो इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया है, ग्रुप एल में अपनी जगह बिल्कुल मजबूत कर ली है। अब क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से मात देकर राउंड 32 का टिकट बिल्कुल पक्का कर लिया है। पोर्चुगल ने कोलंबिया के साथ 1-1 का ड्रॉ खेला और ग्रुप विनर्स के तौर पर आगे बढ़ गया है। और सबसे इमोशनल कहानी रही अगर कल की तो कांगो की रही, द DR कांगो, जिसने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप हिस्ट्री की अपनी पहली जीत और पहली नॉकआउट क्वालिफिकेशन हासिल की है। वेल ये तो हो गया अब पिछले 24 घंटे के बारे में, लेकिन अब शुरू होने वाला है राउंड ऑफ 32। अब डू और डाई का फेज है और पहला नॉकआउट मुकाबला जो है वो ग्रुप ए के रनर अप और ग्रुप बी के रनर अप के बीच में होने वाला है। एंड नाउ देयर इज नो सेकंड चांस बॉस, बस अब तो जीतना है, आगे बढ़ना है, और जो हारेगा उसकी वर्ल्ड कप 2026 की कहानी होती है खत्म। वेल ऑन दिस नोट, विच टीम आर यू रूटिंग फॉर? 5001896 नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, बताइए क्या आप बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इस बार का वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो या फिर मेरे अपडेट्स पर आप रिलाई कर रहे हो कि हाँ आफरीन ने बताया है कल का स्कोर ये है और आज का स्कोर ये है, ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, हमें वर्ल्ड कप की सारी खबर मिल चुकी है बस। So my friends, बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। Meanwhile, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्च स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं

0: वही गिफ्टिंग का टेंशन में। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे. थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा.
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसकी जुबां होती है। देखिए, एक वक्त था जब हाँ ही एग्रीमेंट होती थी, किसी का कहना, किसी का वादा करना एक गारंटी होती थी। लेकिन शायद अब वक्त के साथ बदल गया है, ये हम भी जानते हैं।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: और इसी बात पर जॉन इलिया साहब की दो लाइंस मुझे समझ में आई है कि जरूर मुकरे होंगे लोग पहले जुबां देकर। गौर फरमाइए कि जरूर मुकरे होंगे लोग पहले जुबां देकर, वरना दस्तखतों की इजाद क्यों पेश आती। क्या बात है, आई मीन क्या खूबसूरत तंज है, मैं कहना चाहूंगी ये। सोचिए ना कि अगर हर जुबान अपने वादे निभा देती तो शायद कागज, स्टैंप, सिग्नेचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाल शेखर ब्री प्राक की आवाज में ये गाना राइटर और मिर्ची और आपके साथ में है। भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई वीकेंड इतना ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत अरसे बाद कतर में एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि यार इवेंट्स बड़े मजे के थे। एक तरफ तो यार खाने पीने का एक अलग ही मजा चल रहा था, जहां पर मैं मैंगो एग्जीबिशन की बात करूं, एंड आई रियली विश यार ये मैंगो एग्जीबिशन 10 दिन के लिए क्यों आता है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट दिस टाइम, तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ मैं एक तरफ तो मैंगो था और दूसरी तरफ तीबल हजम परफ्यूम एग्जीबिशन, फॉर्चुनेटली ये अभी अभी शुरू हुआ है तो ये अब चलेगा, 4th of July तक चलने वाला है। लेकिन आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आज जाएंगे कल जाएंगे, अच्छा ठीक है ना परसों चले जाएंगे, लेकिन वो कल ना कभी कभी आता नहीं है और बहुत सारी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, और ये रिग्रेट मैं मैंगो एग्जीबिशन से लेकर बता रही हूँ। सो वेल, अगर आप बहुत सुन रहे हो अबाउट दिस परफ्यूम एग्जीबिशन, सो आई थिंक सो यू शुड गो एंड चेक इट आउट। अगर कभी नहीं गए हैं तो जाकर देखो भाई क्या हवा है, वहां की हवा में बस खुशबू ही खुशबू है। वेल ऑन दैट नोट लेट मी टेल यू ऑल्सो दैट आज का दिन और कल का दिन इट्स ऑल्सो अ फैमिली डे देयर, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सिर्फ फैमिलीज अलाउड रहेगी। इन केस यू आर प्लानिंग कि आप अकेले जाकर देखें, ऑल द मैन आउट देयर डू नॉट ट्राई दिस स्टंट एटलीस्ट दीस टू डेज। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hello, Mirchi Helpline.
1: Hi there. What's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख रख
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: टाइटल ट्रैक भाई साहब, ये गाना जो है इस शख्सियत पे सूट ना करे तो फिर किस पे करे? वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली द किंग खान, यानी कि शाहरुख खान।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mithi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते एक बार फिर से आ चुकी हूँ. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना कुछ गाने जो बनाए जाते हैं या कुछ गाने जो लिखे जाते हैं, ये खासकर कुन शख्सियत को याद कर लिखे जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि गाने बन जाते हैं एंड ये रियलाइज भी नहीं होता है कि भैया ये गाना जो है आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में इस इंसान पे इतना सूट करेगा. लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको गाना सुनाया, द टाइटल ट्रैक ऑफ फिल्म बादशाह, अगर आप सुनेंगे तो आपको ये बात महसूस बहुत अच्छी तरह से होगी कि गाने के हर एक शब्द जो लिखे गए ना, ऐसा लगता है डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान यानी कि किंग खान को सोच कर लिखे हैं. बढ़िया जी. देखिए, हर किसी की ज़िंदगी की ना अपनी अपनी कहानी होती है और वो कहानी जो है एक साउंड ट्रैक या एक गाना उस शख्स के लिए ज़रूर बनता है. यार, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन को जिए इतने खूबसूरत और इतनी अच्छी तरह से जिए कि जब आप अपनी ज़िंदगी का वो गाना लिख सके ना, तो वो धुन जब लोगों तक पहुँचे तो कुछ और करे ना करे, लेकिन हाँ, उनकी ज़िंदगी में खुशियों की लहर जो है वो ज़रूर लाए. अब ज़िंदगी को उस तरह से कैसे जीना है, ये बात जो है आपसे बेहतर तो कोई और नहीं जानता. लेकिन हाँ, आज इस नए हफ्ते की शुरुआत करते हुए जहाँ पे एक तरफ हम बहुत जल्द जून के महीने को अलविदा कहने वाले हैं, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी. ज़रा देखिए मिर्ची घड़ी आज क्या कहती है. वन मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:06.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चलिए जी, वक्त मैंने बता दिया, अच्छे वक्त की शुरुआत भी आपकी और हमारी जिंदगी में हो चुकी है. साथ ही सुबह सुबह एक सवाल करना चाहूंगी, जितने भी एग्जिस्टिंग गाने हैं जब आप सुनते हैं तो उनमें से आपको कौन सा गाना ऐसा लगता है जो आपकी जिंदगी की कहानी बयां करता है? चलिए जल्दी से उसका टाइटल जो है मुझे लिखकर भेज दें, 5000-1896. वी विल गेट कनेक्टेड देयर. मीनवाइल एक काम करते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज, निकिता गांधी का साथ, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ, आपके रास्ते. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गमा पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

मशहूर रानी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। नचने की तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि कोई और है जो इस वक्त मुझे 101% अपने इशारों में जरूर नचा रहा है। इतना ही कहना चाहूंगी कि जो तड़कती भड़कती गर्मी है, इसने पता नहीं बाहर में कितना कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन ना मेरे अंदर जरूर इसने ज्वालामुखी इस वक्त निकाली दी है। हैविंग सेड दैट, यार गर्मी बहुत है, इस गर्मी में ना बहुत ही ज्यादा वायरल इन्फेक्शन प्रेवलेंट है। आई एम अगेन नलिनी दुबेदा, मेरी आवाज़ से आपको बिल्कुल महसूस हो रहा होगा। इतना ही कहना चाहूंगी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एंड इन केस अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी आपको किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है या आपको सर्दी जुकाम है, प्लीज़ अपने ऑफिस से छुट्टी लें एंड अपने घर पर बैठे, बिकॉज अगैन ये जो है कंटेजस है, एक से दूसरे को फैल रहा है एंड बहुत खतरनाक तरह से फैल रहा है। इनफैक्ट इसके सिम्टम्स जो है ना यार, ये भी बड़े कमाल है। अगर आपको लग रहा होगा कि जब मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ तो मैं क्यों आई हुई हूँ, नहीं, मुझे ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं एंड अब मैं इस स्टेट पर आ गई हूँ कि हाँ मैं किसी और तक ये ना पहुँचाऊँ या ना फैलाऊँ, इसलिए मैं ऑफिस में आई हुई हूँ। तो जहाँ पर एक तरफ आपका गला दुखता है, वहीं दूसरी तरफ आपको ग्रेजुअली सर्दी होने लगती है, हल्का कान में दर्द भी होता है, एंड अगर ऐसा कुछ हो रहा है साथ में सर भी दुख रहा है, तो समझ जाओ ये वायरल इन्फेक्शन ने आपको पूरी तरह से चूम लिया है। चलिए जी, इतना ही कहना चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी पीते रहें, गर्म पानी पीते रहें। लेकिन अभी फिलहाल अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये अगला ब्रांड न्यू ट्रैक मैं आप तक पहुँचाती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: लगे।
1: वेल बादशाह ने रजत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। भाई साहब कोई भी सवाल हो इस वक्त जवाब जो है ना एक ही आ रहा, और ये बात तो तय है।
2: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 39 साल की उम्र, वर्ल्ड कप का प्रेशर एंड उसके बाद भी दुनिया को इस वक्त अगर कोई नाम याद है तो बस ये कि मेसी, मेसी, absolutely यार। एक बार फिर से मेसी ने दुनिया को ये याद दिला दिया कि भाई उनके जैसे जो लेजेंड्स हैं ना, वो सिर्फ गेम को मैदान में खेलते नहीं हैं, वो अगर क्रिएट करते हैं तो ऐसे मोमेंट्स जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। यार इस फीफा वर्ल्ड कप के सीज़न में अगर आप अर्जेंटीना के ग्रुप स्टेज के पूरे मैचेस को देखने की कोशिश करें तो भाई इस टीम ने पूरी तरह से कमाल किया। 3 मैचेस, 3 की 3 विन एंड सबसे खास बात, अब जो ये बहुत कंफर्टेबली राउंड ऑफ 32 में एंट्री कर ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी अर्जेंटीना की अगर बात करें तो स्पॉटलाइट पर अगर कोई है तो वो है वंस अगेन लेनल मेसी। एंड भाई साहब इस बंदे ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, जब उससे पूछा गया कि क्या आप आने वाले सीजन में भी खेलेंगे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर मेरे शरीर में ताकत है, हिम्मत है तो मैं ये काम 101% अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए करता रहूंगा। यार कभी हैट्रिक, कभी क्रूशल गोल्स, कभी बेंच से आकर यू नो मैच का पूरी तरह से मूड बदल देना। एंड यार सबसे खास बात ये उनका मैजिकल फ्री किक, मतलब ऐसा लगता है यार ये बंदा जो है ना बॉल को भी पता ना लगने दे कि इसे कहाँ जाना है। यार ये एक ऐसी लेगेसी है, हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, जरा सोचें, जहाँ पे हम फुटबॉल के ऐसे लेजेंड्स को लाइव विटनेस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स लाइक मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे एंड हु नॉट एंड व्हाट नॉट। इतना ही कहना चाहूँगी यार, अपने बच्चों को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हो रेजिलियंस का, डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का, हर हाल में जुनून के साथ अपनी मंजिल को पाने का, तो अपने बच्चों को इनके मैचेस जो हैं वो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, ये है एक ज़रिया ज़िंदगी की सीख पाने का। चलिए यार आपसे पूछना चाहूँगी, इस बार के जो आप फीफा मैचेस अभी तक देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी वो टीमें हैं, यू नो वो कौन सी 4 टीम्स होंगी जो टॉप 4 में पहुँचेंगी, क्या लगता है आपको, फटाफट से बताएं। 5000-1896, 5000-1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल मैं बोलूँ, आप बोलें, जो भी बोले यार, रहमान की आवाज़ में अगला गाना एन्जॉय ज़रूर करें। बंदी का राम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

वैसे अगर प्रीत की मैं बात करूँ तो ये बात तो तय है कि लोगों को इस पूरे के पूरे माहौल से प्रीत जो है ना वो जरूर लग ही चुकी है। लेकिन एक ऐसे इवेंट की बात करूँ जिसने जेन्युइनली हम सबका मन जो है वो 101% मोह ही लिया, तो भाई उसका नाम है द हम्बा एग्जीबिशन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन मैंगो फेस्टिवल जो कि बहुत अच्छी तरह से कंक्लूड किया गया कल सुको वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में। भाई साहब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि महज 10 दिनों में अगर कुल मिलाकर आम की बिक्री की बात करें सो इट वॉज नियरली 150,000 किलोग्राम्स। एब्सोल्युटली यू हर्ड दैट राइट। एंड इसके अलावा अगर आप विजिटर्स को देखने की कोशिश करें सो इट क्रॉस्ड 125,000, मतलब 125,000 लोग। भाई आम के प्रति लोगों का रुझान एंड क्रेज जो है ये कितना खास है ये बात जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। एंड क्या बेहतरीन मैंगो की वैरायटीज़ यार, जहाँ पे एक तरफ आम की वैरायटीज़ तो थी वहीं दूसरी तरफ आम से बनी हुई डेलिकेसीज जिस तरह से सर्व की गई ना, दिल जो है उन्हें टेस्ट करने के बाद खुशी से गदगद आने की गार्डन गार्डन हो गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैंगो को नाफा खाया यार। मैंगो कुनाफा भी बन सकता है, क्या बात है यार। उसके बाद वो मैंगो दही चाट, आई जस्ट कांट इमेजिन एंड बिलीव कि ऐसा भी कुछ होता है। समोसे में आम की चटनी मिलती है तो मुझे पता था, हमने भी कई बार घर पे ट्राई किया है, लेकिन समोसे के अंदर आम की कोई फिलिंग ही कर दे, कच्चे आम एंड साथ में पके आम के भी। हाँ जी, मैंने मीठा समोसा भी खाया एंड साथ ही मैंने खट्टा समोसा भी खाया जिसमें एक में कच्चे आम की फीलिंग थी और एक में पके आम की फीलिंग थी। सो द एक्सपीरियंस वॉज इंडीड मैजिकल एंड वी जस्ट कुडंट वेट फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन टू रिटर्न। एंड अब अगर इंतजार किसी बात का रहेगा तो वो होगा पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन का। क्या कहती पब्लिक। फहीम अब्दुल्ला की आवाज़, अगला प्यारा सा गाना सियारा का टाइटल ट्रैक आपके रास्ते। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Well, Diljit Dosanjh ki khubsurat si awaz, film ka naam Manmarziyan, what a lovely track it is. Is waqt ye khubsurat sa gaana to maine aapko suna diya, lekin aapke raaste aati hui ek achhi khabar bhi pahuncha di jaye.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. And is waqt Hamad International Airport ki baat kare to itna samajh jaye ki bahut sare international airlines ki operations jo hai ab gradually resume ho hi rahi hai. Jaise jaise dheere dheere airport operations ki hum baat kare, wo apne normal routine mein aage badh rahe hain, waise waise aur bhi nayi airlines jo hain wo add hoti hi ja rahi hai. Agar main aane wale mahine ki baat karu, yani ki July ko dekhne ki koshish kare, to bhi ab 5 nayi airlines aisi hain jo ek bar phir से जुलाई के फर्स्ट वीक में ही अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करेंगी. जितने भी इंडियंस इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपके लिए अच्छी खबर. अकासा एयर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 1 जुलाई से इसके ऑपरेशंस कतर से शुरू हो रहे हैं. एंड इसके साथ ही रॉयल एयर मैरोक जो है वो भी अपने ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं. फिलीपींस एयरलाइंस भी शुरू करें, मलेशियन एयरलाइंस 2 जुलाई को शुरू करेंगे. एंड इसके साथ ही आइबीरिया ऑन 3 जुलाई. एंड इट कुडंट बी मोर एक्साइटिंग बिकॉज बात इतनी है, ट्रैवल के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है भैया एयर फेयर भी जो है वो भी थोड़ा कम मिलेगा. एंड जितने ऑप्शन ज़्यादा उतना एयर फेयर कम, ऐसा दिमाग बोल रहा है. आई एम जस्ट होपिंग. तो एयरलाइन बुकिंग में जो पैसे बचाओगे ना उससे पार्टी करेंगे. अगर ठीक है वो ना करो यार, जहाँ भी अपने घर जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, पाकिस्तान जा रहे हो, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ जा रहे हो, आते वक्त अच्छी वाली मिठाई मेरे पक्का लाओगे, ये बात तय है. देखो अगर ऐसा है तो मुझे बता देना, मैं भी जब अपने घर जाऊंगी तो आपके लिए अच्छी वाली मिठाई लेकर आऊँ. सही नहीं, सच्ची मिलाऊंगी यार. बढ़िया जी, अपने ट्रैवल प्लान्स को सही तरह से एनालाइज करें. एंड इसके साथ ही ट्रैवल करने के पहले बिल्कुल बुकिंग कन्फर्म्ड है, इस बात को डबल चेक कर लें. शान एंड गायत्री अय्यर की आवाज़ में अगला गाना सुनाती हूँ. साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि अभी एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ सेफर एंड के लिए 3-3.5 घंटे का मार्जिन 101% लेकर ही जाना. शान की आवाज़, जैसा कि मैंने कहा, ये गाना आप इन्जॉय करेंगे. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना। रिक्शा वाले मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा
4: यार, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.

अदनान सामी की खूबसूरत आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, इनकी आवाज़ जो है ना, सच कहूँ ये प्यार से कम नहीं। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajay Anshu with you. मतलब कुछ गाने ना ऐसे होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं कि ऐसी फीलिंग्स अगर आपकी जिंदगी में नहीं आई हैं तो उन्हें लेकर आओ क्योंकि गाने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भैया ऐसा कोई लाइफ में हो जिनके लिए हम जो है ना ये सब महसूस कर सके, फील कर सके। लेकिन यार प्यार जो है ना ये बड़ी कमाल चीज़ है, खुशी जो है ये भी काफ़ी कमाल है, या दुनिया की जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स की आप बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़ी कमाल है। वो कहते हैं ना, अगर औरों पे यकीन करना सीखना है तो सबसे पहले खुद पे यकीन करें, औरों से इश्क प्यार मोहब्बत करना है तो पहले खुद से तो करें, एंड जब तक अच्छाई जो है आप खुद में ना ढूंढेंगे आप किसी और में कैसे ढूंढ पाएंगे। यार एक बात तो तय है, बचपन से ना मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है कि किसी का बेसिक नेचर जो होता है ना वो हर जगह सेम ही होता है, उसे रिफ्लेक्ट करने का, डिपिक करने का तरीका जो है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंसान की फितरत जो है वो हर जगह एक सी होती है, फिर चाहे वो खुद के लिए हो या औरों के लिए हो। तो अगर आपको लगे कि आप किसी के लिए कुछ सोचना चाहते हैं या ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप खुद के लिए कैसा महसूस करते हैं। अगर खुद को लेकर आप हमेशा कॉन्फिडेंट हैं, जेन्युइनली पॉजिटिव हैं, खुद को पुश करना जानते हैं, तो इतना समझ जाए आप औरों को भी बस इसी तरह से उसी पैमाने में आकेंगे एंड नापेंगे। देखो भैया ये तो आपको अच्छी अच्छी बातें मैंने बता दी, एंड अगर आपको लगे कि मेरी अच्छी बात आपको बहुत अच्छी लगी तो यार एक थैंक यू मैसेज तो बनता है 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल गुड नजर की आवाज़ यानी अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: चाहिए।
1: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
6: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

सुरनिकम एंड श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म दबंग। चलिए, प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई बहुत खास सी कॉन्वर्सेशन है वो भी इस वक्त आपके बीच पेश कर ही दी जाए। मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू। एक बात बताएं, ऊपर वाले की बात से बढ़कर दूसरी और कॉन्वर्सेशन जिंदगी में क्या ही हो सकती है, या और कुछ खास क्या ही हो सकता है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे और बातें करूं, कुछ पल ऊपर वाले की इबादत में उसे याद करने में बिताते हैं।

0: Hollywood Bollywood Boulder only on Mirchi it's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी. सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में.
1: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: हेलो शार्प्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो. भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
6: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.

जावेद अली की खूबसूरत सी आवाज़ कीर्ति सांगतिया का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म रांझना। यार ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई तो पावरफुल कॉन्वर्सेशन है, ज़रा उस पर नज़र डाली जाए।

0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajayanshu. Well, एक बार फिर से अब जो बातचीत का सिलसिला मैं आपके बीच पेश करूंगी, भाई साहब, इस बातचीत ने इस एक्टर को इंडियन सिनेमा में एक अलग मुकाम दिया. इन्हें हमने कई रूप में देखा है, कई तौर से देखा है, लेकिन इतनी वर्सेटैलिटी इनकी एक्टिंग में, शायद इस फिल्म ने इनको एक अलग पहचान एंड अलग रिकॉग्निशन दी. अभी कौन सी फिल्म है एंड किस प्राइम कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये घूमती है, ये बात मैं बता दूँ तो आप ही क्या करेंगे. चलिए जी, कोई तो कॉन्वर्सेशन है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ. आपको इस कॉन्वर्सेशन को सुनना है, आइडेंटिफाई करना है एंड मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से एंड इसमें लीड रोल निभाते हुए आपको कौन से एक्टर नजर आए थे. करेक्ट आंसर कहाँ? एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वाज़ 5000 1896 5000 1896 पे विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कथरिया मिर्ची अंशु. एंड आपको पता है जब आप अपने आवाज़ में जवाब रिकॉर्ड कर भेजते हैं ना तो मुझे खुशी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है. सो हियर वी गो.
1: आराम से नाश्ता तो करने दो.
2: हाँ भाभी, पूरी दो ना.
3: हाँ हाँ, एक क्यों, 40-50 ले लो. ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे.
1: लो बेटा,
2: ये आपकी पूरी, ये आपका ब्रेड और ये आपका दूध.
0: क्या बात है जी, मतलब वो कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट. नहीं, लेकिन खाने के सामने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं निकलती. कोई बात नहीं, वो सिंग वाला डायलॉग दोबारा और सुन लेंगे, लेकिन खाना तो पूरा खा के जाएंगे. लेकिन ना, इस शख्स ने ऐसा ना किया. तो ये शख्स है तो है कौन जिन्होंने बात को इतनी दिल पे ले ली, साथ में ये कॉन्वर्सेशन बातचीत हुई तो हुई किस फिल्म में. 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल ये अगला पावर पैक गाना आपके रास्ते. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: अग्नि के नरसिंह सिंह की खूबसूरत सी आवाज है और लवली ट्रैगरस फ्रॉम द फिल्म तमाशा। यार बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एनिमेटेड फिल्म, बस मैं यही कहूंगी। लेकिन आज के डेट में जब जब ये फिल्म आप देखते हो, आपको समझ में आता है कि जिंदगी जीने के मायने जो है ना कहीं इस फिल्म में जरूर छिपे हुए हैं। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, अब से कुछ देर पहले कोई तो बातचीत है जो हर घर की कहानी है जो मैंने आपके बीच पेश की थी। आपको सुन आइडेंटिफाई कर, बस मुझे ये बताना था कि ये कॉन्वर्सेशन हुई तो हुई किस फिल्म में, एंड साथ ही इस फिल्म में लीड कैरेक्टर नजर निभाते हुए अगर कोई नजर आए तो वो कौन है। एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, जल्दी से ये बातचीत मैं एक बार फिर से सुनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि अभी भी सुनते सुनते आपने पहचान लिया है सही जवाब, तो मुझे जल्दी से भेजना 5000 1896 पर। We will get connected there, but for now, here we go.
1: जी आराम से नाश्ता तो करने दो।
2: हाँ भाभी पूरी दो ना।
3: हाँ हाँ एक क्यों? 40-50 ले लो। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे।
1: लो बेटा।
2: ये आपकी पूरी, ये आपका ब्रेड और ये आपका दूध।
0: भाई साहब गुस्सा होना तो लाजमी है, लेकिन यार मैं सोच रही थी नाश्ता करने के बाद गुस्सा होते तो पेट पूजा बाकी काम दूजा। जस्ट सही।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ खान है। इस फिल्म का नाम है तेरे नाम। ये आवाज है सलमान खान की।
5: द आंसर, करेक्ट आंसर इज तेरे नाम मूवी नेम एंड द एक्टर नेम इज सलमान खान। माय नेम इज शाहिद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम अलकोर सिटी।
0: Well, thank you so very much for your correct replies. आप सबने जो जवाब दिया है तो पूरी तरह से सही। इनफैक्ट जितने लोगों ने लिख कर भेजा है, चाहे मैं मुख्तर की बात करूँ, केके की बात करूँ, अनवर की बात करूँ, यूसुफ की बात करूँ, एंड टू ऑल द पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड, थैंक यू सो वेरी मच। एब्सोल्युटली इस फिल्म का नाम है तेरे नाम। यार साल 2003 में थिएटर्स में एक नाम कुछ इस तरह से गूंजा कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की पहचान बन गया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राधे। पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया सतीश कौशिक ने, प्रोड्यूस किया सुनील मनचंदाना एंड मुकेश तलरेजा ने, एंड इस फिल्म में अगर आपको कोई नजर आए तो वो है सलमान खान अलॉन्ग साइड भूमिका चावला, जिन्होंने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। एंड भाई म्यूजिक जो इस फिल्म की जान बन गया वो दिया हिमेश रेशमिया ने। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म की सक्सेस जो है ये सलमान खान के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। देखिए उस वक्त तक ना लोग सलमान खान को एक्शन एंड चॉकलेट बॉय इमेज में देखा करते थे, लेकिन राधे ने सबको ये दिखा दिया कि उनके अंदर एक इनक्रेडिबली इंटेंस एक्टर भी छुपा हुआ है। एंड आज भी बहुत सारे क्रिटिक्स और फैंस का ये मानना है कि तेरे नाम ने सलमान खान के फाइनेस्ट परफॉर्मेंस को डिलीवर किया। क्या बात है यार। अब यहाँ पर आपको एक सबसे खास बात बताती हूँ, कुछ याद हो या ना हो लेकिन राधे का जो हेयर कट था वो उस दौर में उस जमाने में हर गली हर कॉलोनी में एक सेंसेशन बन गया। इनफैक्ट हर एक कॉलेज स्टूडेंट का ट्रेंड बन गया। एंड उस समय सलमान खान ने कुछ एक ऐसा ट्रेंड सेट किया कि हर किसी को कहीं ना कहीं अपने आप में राधे नजर आता था। लेकिन आपको पता है कि इस लुक के पीछे इंस्पिरेशन कौन था? ये सलमान खान ने काफी सालों के बाद एक इंटरव्यू में रिवील किया था। द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस लुक वॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिल्कुल ठीक सुना आपने। किसने सोचा था कि इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है कभी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक हेयर स्टाइल के इंस्पिरेशन बनेंगे, वो भी कलाम साहब। बढ़िया है जी। देखिए कहाँ से क्या चैप्टर निकल कर आए ये बात जो है कोई नहीं समझ सकता। क्या आपको ये फैक्ट पता था? नहीं पता था तो मुझे थैंक यू बोलो। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल उदित नारायण की आवाज़ का याग्निक का साथ, यानी अगला गाना आपके लिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुम तो ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
3: कैच ऑफिसर ब्राउन,
5: ऑफिसर ब्राउन
3: टेयरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June।
6: हाउस ऑफ जॉश,
7: हाई सर,
6: हाउस ऑफ जॉश,
7: हाई सर।
8: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची।

0: सच कह रही हूँ, ये ना नाइंसाफी है एंड कड़क नाइंसाफी है। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aryanshu with you. मुझे एक बात बताना, बचपन के दिनों में कभी अपने पापा, चाचा, ताऊ, दादा किसी को भी सनस्क्रीन लगाते हुए देखा है? भाई साहब 32 रुपए के साबुन से वो नहाया करते थे एंड उसके बाद भी चाहे कितनी भी धूप में ये क्यों ना निकल जाए, कभी इनकी स्किन टैन नहीं हुई। मतलब लाल जरूर होती थी लेकिन एक बार फिर से 32 रुपए के साबुन से मुंह धो के आते थे एंड स्किन जो इनकी चमकने लगती थी। आज की डेट में हम 3200 का सनस्क्रीन भी क्यों ना लगाए, भाई हम लड़कियों की स्किन 5 मिनट में बगैर इसके ऐसे टैन होती है कि इसे साफ होने में अगले 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, आज के डेट में ये जो मेन है ना, ये काफी बदल चुके हैं। छुप छुप के चोरी चोरी हमारा ये 3200 का सनस्क्रीन ऐसे लगाते हैं अपनी शक्ल में जैसे कोई 32 रुपए का साबुन हो। रियलाइज किया आपने? जरा देखें आज की डेट में सूरज चाचू क्या ही कोहराम मचा रहे हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: Weather update.
0: Well, today's maximum temperature is going to be somewhere around 47. Minimum is going to be around 35. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को fully hydrated रखें और हाँ साथ ही वो जो sunscreen है वो आपका best friend होना चाहिए, बिल्कुल अंशु की तरह। Stay tuned to Mirchi, बंदी का नाम अंशु। Enjoy.
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100 0813.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पीछे
1: जी छुट्टी आई है, आई है छुट्टी आई है।
2: मिर्ची अंशु
1: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। टिकट्स तो बुक हो ही चुकी होंगी, पैकिंग शैकिंग भी कंप्लीट हो ही गई होगी एंड अब जो है ट्रैवल की बारी है, क्योंकि फाइनली छुट्टी वाले दिन यानी कि वेकेशन मोड हमारी जिंदगी में आ ही चुका है। एंड इस वक्त अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बात आपको बहुत ध्यान देनी है, दैट एयर सुविधा 2.0 मैंडेटरी तौर पर वापस आ चुका है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि इंडिया फ्लाई करने से पहले इस वक्त ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंशु फिर से क्यों, भाई ये स्टेप लिया गया है एक प्रिकॉशन के तौर पर, स्पेशली अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में रिपोर्टेड इबोला केसेस को देखते हुए। ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दी, सेफ्टी फर्स्ट एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। एंड अच्छी बात यह है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, फॉर्म आप अराइवल से 24 आवर्स पहले आसानी से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि वेब चेक इन के साथ ही इसे कंप्लीट कर लीजिए, एयरपोर्ट पर या इमिग्रेशन के टाइम पर अननेसेसरी डिले से आप बच ही जाएंगे। तो पैकिंग लिस्ट में जहां पे एक तरफ पासपोर्ट है, बोर्डिंग पास है, वहीं दूसरी तरफ एयर सुविधा फॉर्म भी 101% ऐड करना है। तो बस घर जा रहे हो, मम्मी पापा को प्रणाम कहना, ताई जी को भी प्रणाम कहना, छोटों को खूब सारा प्यार एंड सुनो लौटते वक्त वो मिठाई का डब्बा अंशु का, हाँ मम्मी से कह देना वो पैक कर देंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: दर्शकों, ये जो खुशी होती है ना, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन दिल को तसल्ली बड़ी दे जाती है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड ये बता दूँ, ये दोनों की दोनों फीलिंग्स एंड दोनों की दोनों इमोशंस है ना, आप इस वक्त ज़रूर महसूस करेंगे. जब ये बात पता हो कि भाई सैलरी बहुत जल्द अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है, महीने भर जो हमने काम किया कहीं ना कहीं उसका फल जो है मिलने वाला है, एंड साथ में ये रियलाइजेशन हो जाए कि एक्सचेंज का रेट जो है ये काफ़ी कमाल है, तो कहा ना ये छोटी सी खुशी कहीं ना कहीं दिल के सुकून का जरिया बन ही जाती है. तो बस ऐसी ही कोई खुशी इस वक्त मेरी जुबानी मैं आप तक पेश करूंगी. लेकिन ये कहानी है तो है किसकी? हाँ जी, जरा देखिए आज आई पी मनी में पैसे का क्या ही बोलबाला है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.91, नेपाली रुपीज 41.38, पाकिस्तानी रुपीज 76.85, बांग्लादेशी टाका 33.90, एंड इसके साथ ही लंकन रुपीज डंका बजाते हुए 92.44. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल एक ही काम करना है. जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए ठिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi Helpline?
1: Mirchi Helpline, what is the question?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: यार अक्सर मैं ये बात कहती हूँ अपने आसपास के लोगों से और खुद से भी कि द नेशन दैट आई बिलोंग टू इज प्रोक्रेस्टिनेशन।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और वाकई में यार ये प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लव्ज है जो बड़े होते होते कब हमारी दुनिया में आ गया ना पता ही नहीं लगा। लेकिन यू नो बातों ही बातों में मैंने ये भी रियलाइज किया कि बचपन में भी हम प्रोक्रास्टिनेटर्स थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने आज हैं। हाँ, क्योंकि बचपन में अगर हम किसी चीज को टालोफाई किया करते थे तो वो ज्यादा से ज्यादा होमवर्क हुआ करता था या फिर ट्यूशन जाना हुआ करता था। पढ़ाई से एनीथिंग पढ़ाई से रिलेटेड यूज टू बी प्रोक्रेस्टिनेटेड। बड़े होते होते ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन टर्म है ये हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में घुसता चला रहा है। सो मच सो दैट कि आज हम मस्ती मारने का जो चांस होता है उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। मतलब अगर फ्रेंड्स जो हैं वो कोई प्लान बना रहे हैं तो एक पल के लिए तो एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन जब वो प्लान पुख्ता हो जाएगा कि बनने ही वाला है हम टालने लग जाते हैं कि हाँ मतलब यहाँ काम आ गया, वहाँ काम आ गया, स्टक एट द ऑफिस, आई कांट मेक इट फॉर द प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई रियलाइज कि एज किड्स हम कितने सही थे यार, कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर किया करते थे यार एक दिन के अंदर। मतलब पढ़ाई चलो जबरदस्ती कर ली सो कर ली, लेकिन हर एक चीज में हम घुसे हुए होते थे। हाँ मतलब अगर कोई कंचे खेल रहा है तो उसको बैठ के गौर से देखना कि वो कंचे कैसे खेल रहा है। भले ही मुझे कंचे खेलने ना आते हो, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ खड़े होके ये जरूर देखती थी कि ये कंचे कैसे खेल रहे हैं। हाँ, अगर कोई कजिन बैठ के कोई बहुत ही बोरिंग कहानी भी सुना रहा है तो उसको भी हम टालोफाई नहीं करते थे, उसको भी बड़ी इंटरेस्ट से सुना करते थे क्योंकि मेरा कजिन सुना रहा है। अगर कोई बड़ा घर से बाहर जा रहा है तो हमें भी जाना होता था। हम किसी भी चीज में टालोफाई वाला जो जोन होता था ना बिल्कुल नहीं करते थे। जहां मौका मिलता था वहां चौका लगा दिया करते थे कि नहीं यार यहां पर हमें फन मिल सकता है। और आज फन चल के आता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, हम दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं भाई साहब कल आना। ऐसी भी क्या अडल्टिंग यार। इसीलिए कहते हैं कि जहां मस्ती मारने का मौका मिले ना यार चौका लगा दिया करो। दिल तो बच्चा है जी, और इस बच्चे को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखो यार। इनफैक्ट मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताती हूँ जिसकी आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो ना किसी भी चीज को टालता नहीं है। मतलब मस्ती से रिलेटेड काम को डेफिनेटली टाल देगा। उसके मन का बच्चा मुझे बहुत पसंद आता है। एक दिन ना हम लोग ऑटो में जा रहे थे, अब क्या हुआ कि जो ऑटो का टायर था वो पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से ऑटो रुक गया। ऑफ कोर्स तो काम चल रहा था, लेकिन उसने उस मौके को भी इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि उसे भुट्टे वाले की दुकान नजर आ गई। वो फौरन से गया, झट से गया, पट से वापस आया, भुट्टे 3 लेकर, एक ऑटो वाले भैया के लिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए, और मस्त बैठ के हमने भुट्टे खाए। और उसने उस ऑटो का जो टायर पंक्चर वाला पूरा जोन और सैडनेस थी उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया कि यार ऑटो खराब हुआ तो हमें भुट्टे खाने का मौका मिल गया। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ, ये चीज मैंने उससे सीखी और आपको फौरन बता दी ताकि आप भी इसको इनकलकेट कर पाओ अपनी आदतों में। अच्छी आदतें हमेशा उठा लेनी चाहिए। और इसी के साथ आपकी अच्छी आदत कि मुझसे इस वक्त आके मिल लेते हो मिडडे मोहब्बत की गाड़ी में, जिसको कि अब मैं 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। और सुनो जरा मेरी बात नहीं, अब ये गाना स्टे ट्यून्ड।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga. Burga.
2: हेलो
3: भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं?
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एड्रेस दे अपना, कर दे, मैं कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करो बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप, कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सही कहा है यार, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्यार इंसान से क्या नहीं करवा लेता है। आपने वो मूवी देखी होगी बधाई हो बधाई, अनिल कपूर वाली बधाई हो बधाई।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आयुष्मान की बधाई हो से पहले, बहुत पहले, हमारे अनिल कपूर की बधाई हो आई थी यार। और ये फिल्म भी मैंने देखी थी। मैं कोई फिल्म उस टाइम पर नहीं छोड़ती थी, केबल पे जो फिल्म आती थी अपन सब देख डालते थे। सारी नई फिल्में वर वॉच्ड एज इफ टू डू लिस्ट टिक मार्क हो गया था। बट दिस फिल्म वॉज फन यार। आई मीन क्या कॉन्सेप्ट था यार इस फिल्म का, कि एक हष्ट पुष्ट इंसान सिर्फ एक लड़की के प्यार में पतला हो जाता है। और मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिला था ये फिल्म देखने के बाद। हालांकि तब मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया था, लेकिन वो मोटिवेशन मुझे तब मिला जब इसकी जरूरत नहीं थी, और आज जब जरूरत है तो मिल ही नहीं रहा है। इनफैक्ट यही बात एक दिन मैंने अपने जिम में अपने जो ट्रेनर है उनको बोली थी, जब वो कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आप रेगुलर क्यों नहीं होते हो, मैम आप डाइट पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो, तो मैं उनको यही कह रही थी कि सर मुझे ना प्यार में पड़ना पड़ेगा यार वेट लूज करने के लिए, कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, प्यार में पड़ूंगी तो या तो ब्रेकअप के चलते मैं वेट लूज लूंगी रेज में, या तो फिर मोहब्बत के चलते कि मैं अच्छी दिखूं उस तेज में, पर ऐसे हमसे तो ना हो पा रहा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड विद दिस फिल्म, व्हाट अ फन फिल्म यार, जहां पर अनिल कपूर का ट्रांजिशन दिखाया गया है। एंड यू नो व्हाट, ही वाज इन हिज 40s एट दैट टाइम आल्सो, क्योंकि आज भी वो यंग है, तब भी वो 40s के हिसाब से भी काफी यंग थे। बल्कि सेट पर तो ये पूरी चर्चा हुआ करती थी, सतीश कौशिक जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे वो ये बात कहा करते थे कि भाई अनिल में बहुत बिजली है, यानी कि बहुत पावर है, वो इसी तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे कि अनिल में बहुत बिजली है, जनरेटर से भी ज्यादा। बिकॉज अनिल कपूर जब बाकी सारे लोग शूट्स के बीच में रेस्ट कर रहे होते थे, बैठे होते थे, उपासियां ले रहे होते थे, अंगड़ाइयां ले रहे होते थे, अनिल कपूर जो लोग थे ना क्रू के उनको इकट्ठा करके अंताक्षरी खेल रहे होते थे। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। आपको एक और किस्सा बताऊंगी फ्रॉम दिस फिल्म, विच इज अबाउट अ लाफ अटैक, जो कि शिल्पा शेट्टी को आया था। क्यों आया था बताऊंगी थोड़ी देर में, बट यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बधाई हो बधाई। ये मूवी तो किसको याद नहीं गया यार, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, कीर्ति रेड्डी जो अब कहीं नहीं नजर आती। तो ये फिल्म जो थी, इसको शूट करते हुए एक्चुअली हुआ ये था कि शिल्पा शेट्टी को अटैक आया था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि कोई सीरियस बात है, तो बिल्कुल नहीं, ये फिल्म ही सीरियस नहीं थी तो इसके सेट पे कुछ सीरियस कैसे हो सकता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाफ अटैक जो कि शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म की शूट के दौरान एक बार आया था। हुआ ये था कि सतीश कौशिक जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, वो बड़े मजाकिया इंसान थे तो सभी जानते हैं, और सेट पर जो माहौल हुआ करता था ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, एज इफ यू नो कोई पंजाबी वेडिंग हो रही हो, ऐसा सा माहौल था, इतना लाइट माहौल था। और एक शॉट में हुआ ये कि सतीश जी जब शिल्पा शेट्टी को गाइड कर रहे थे शॉट के बारे में फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, तो शॉट चल रहा था लेकिन वो इस तरीके के हैंड मूवमेंट्स दे रहे थे, इस तरीके की साइन लैंग्वेज यूज कर रहे थे कि शिल्पा जो है ना, उनको लाफ अटैक आ गया। मतलब वो हंसते हंसते लोट पोट हो गई और वो शॉट कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। 7 से 8 टेक्स लगे उस शॉट को कंप्लीट करने में, तब जाके ऊपर वाले को हश थैंक यू बोला है बाकी सारी टीम ने। और अगर ना इस सेट की और आगे बात की जाए, तो ये सेट वो सेट है जहाँ मेरा दिल बड़ा होगा यार, अगर टाइम मशीन मिल जाए तो मैं भी जाऊँ यार। क्योंकि इस सेट के जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने इस फिल्म के बारे में जब ये शूट रैप अप हो गया था तो यही कहा था कि यार यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पंजाबी वेडिंग हो रही है, क्योंकि खाना इतना उम्दा, बिल्कुल पंजाबी, ठेठ पंजाबी खाना आया करता था। एंड ऐसा लगता था जैसे कोई शादी का बुफे लगा हुआ है। अब आपको भी लगा ना कि हाय काश हम भी उस सेट पे होते। जिस दिन मुझे टाइम मशीन मिल जाएगी ना, मैं आपको भी इत्तला कर दूंगी, साथ पे चलेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ेंगे, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जाते हैं।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल।
4: Only on मिर्ची, it's hot।
5: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
6: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
5: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल।
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
8: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: community helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख रख
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s का वो दौर था जब एक बिस्किट के एड को भी यादगार बना दिया जाता था और इतना खूबसूरत बनाया जाता था, सो मच सो दैट कि हमारे जो फेवरेट मारी बिस्किट हुआ करते थे ना, उसका पूरा पूरा जिंगल था भाई हमारे पास।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इसका वो जो एड था जिसमें इतना सारा केओस था कि एक बिस्किट के पैकेट के पीछे एक अंकल इतने बावले हुए चले जा रहे थे कि गिरते पड़ते जैसे तैसे वो बिस्किट के पैकेट तक पहुंच ही गए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि बिस्किट्स जो थे वो किस तरीके से पैक हुआ करते थे। पहले कागज में पैक होके आया करते थे यार, धीरे धीरे करके फिर उनकी पैकिंग जो है वो चेंज होती गई, लोगोस बदले, कलर्स बदले। लेकिन आज भी ना, मुझे मारी बिस्किट मक्खन लगा के खाने में जो मजा आता है ना, वो और किसी चीज में नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने स्कूल में ही सीखा था। इंटरवल में अपनी एक फ्रेंड का टिफिन खाया था और उसने मारी पर मक्खन लगाया था, और मैंने घर आके मम्मा को यही बोला, मम्मा आज से मैं ऐसे ही खाऊंगी इस बिस्किट को। उसके बाद जो ये बिस्किट इतना बचा करते थे और हमेशा रहा करते थे पैंट्री के अंदर, वो गायब होने लग गए, क्योंकि मक्खन लगा लगा के मैं उसको खाने की तरह खाने लग गई थी। ओह माय गॉड, बात करते करते मुंह में पानी आ गया। लेकिन अभी फिलहाल इस एड को सुन के जरा याद ताजा करे। अच्छा, खास बात और ये थी इस एडवर्टाइजमेंट की कि इसके लिरिक्स इंग्लिश में थे, एंड एट दैट टाइम इंग्लिश गानों तक हमारी इतनी पहुंच नहीं थी। तो ये जो गाना था, यानी कि ये जो जिंगल था एक बिस्किट के एड का, इसे ही गा के हम इम्प्रेशन जमाने की कोशिश किया करते थे और ना फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, वो भी क्या दिन थे। इम्प्रेशन जमाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट ही काम आ जाया करता था यार। एनीवेज, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La fiesta la burka.
0: Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गम पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती हैं।
3: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: माय गॉड, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन, तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: Ja Simran, ja jee le apni zindagi, ja beta, ja.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1.
11: It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उफ, ये रूमर्स भी ना, इन्हीं रूमर्स के चक्कर में तबू को फिल्म मेजर साहब में कास्ट करते करते रह गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, जब मूवी बनने वाली थी तो फिल्म मेकर्स तबू को फीमेल लीड में लेना चाहते थे, लेकिन लेकिन लेकिन उस वक्त ये रूमर्स थे कि तबू इज अबाउट टू गेट मैरिड, जिस वजह से फिल्म मेकर्स डिसाइडेड टू नॉट कास्ट हर एंड टुक सोनाली बेंद्रे फॉर द रोल इंस्टेड। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि रूमर्स पर यकीन करने के बजाय सीधा तबू से ही कंफर्म क्यों नहीं कर लिया इन लोगों ने। हाँ, तब सबके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे ना, शायद इसी वजह से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा, है ना। एनीवेज, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मन मूवी से ना देर इज दिस ट्रैक जो मुझे अच्छा तो लगता है और याद भी है, लेकिन ये मुझे और खास तौर पे इसलिए याद है क्योंकि ये गाना मेरे कजन को ना चिढ़ाने में बड़ा काम आता था। उन्हें ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे कजन को नापसंद भी था, और अब इस गाने के बारे में एक खबर और पता लगी है, वो ये कि ये गाना ओरिजिनल भी नहीं। द सॉन्ग इज

और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं संजीव दर्शन. नाउ बेसिकली दिस गाना हैज नॉट बीन कॉपीड फ्रॉम एनी इंग्लिश और पाकिस्तानी सॉन्ग. भाई हम जा चुके हैं मलेशिया. दिस इज अ मलेशियन सॉन्ग सिदांग सिदांग साजा, जो कि इवान करके एक आर्टिस्ट है वहां पर, उनका गाया हुआ है. और सुनिए जरा कितना प्यारा लग रहा है ये गाना. हालांकि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल प्यारा.

देखो यार, नकल में अकल मैं हमेशा कहती हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन यार संजीव दर्शन ने जरा भी इतना और एफर्ट नहीं डाला कि थोड़ा अपना कुछ ओरिजिनल भी डाल देते। आई मीन ठीक है, आपने एक पीस उठा लिया, लेकिन आपने तो पूरा पूरा गाना ही उठा लिया यार कॉपी करने के लिए। कट कॉपी पेस्ट। चलो इसी बात पर, भले ये गाना ना सही, लेकिन मन मूवी से एक और गाना जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस.
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट
4: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल

أشهد أن لا

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है what was I searching for a while ago? Postcards.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And यार, being a 90s kid, I realized कि boss, जो मजा पोस्ट कार्ड में मैसेज लिखकर भेजने में था ना, वो व्हाट्सएप मैसेजेस में नहीं है. एंड यू नो व्हाट हैव आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है टू स्टार्ट एन ओल्ड ट्रेंड दिस ईयर ऑफ सेंडिंग पोस्ट कार्ड्स एंड बर्थडे कार्ड्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. बिकॉज जो मजा पोस्ट में है ना, वो मजा टेक्नोलॉजी में नहीं है. कमाल की बात तो ये है कि मेरी पोस्ट यानी पोस्ट कार्ड्स पोस्ट से ही आएंगे, बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड देम ऑनलाइन. और एक बात और, If you want a postcard from me, तो मुझे मेरे Instagram handle जो कि है मिर्ची सारा, उस पर DM करो और लिखो कि Hi Sara, waiting for your चिट्ठी. First 5 messages को I will be sending a handwritten postcard. चलो ना यार, ये पुराना वाला ट्रेंड फिर से शुरू करते हैं, मजा आएगा. Waiting for your text, और अभी के लिए you stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची. It's hot.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? है राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देखते क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुम तो ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट पका।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Goldspot,
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार आज कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा लो, बट नो वन मैचेस योर वाइब। तुम सिर्फ गोल्ड स्पॉट नहीं, गोल्ड की पूरी ब्रेक थी। तुम्हारा असर हमारी यादों पर इतना भारी रहा है। अक्सर जब कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है ना, तो बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र निकल ही जाता है कि यार कहीं से कोई गोल्ड स्पॉट ला दे तो मजा आ जाए। आई रिमेम्बर बचपन में हमारे घर में काम करने वाले यूसुफ भाई ना, हम बच्चों को खुश करने के लिए हमें गोल्ड स्पॉट पिलाया करते थे। कांच की कर्वेशियस तुम्हारी बोतल विद अ टिन का ढक्कन, उफ तुम वाकई चीज बड़ी थी मस्त मस्त। आज भी अगर कोई डार्क ऑरेंज कपड़े पहनकर आता है ना, तो उसका नाम उस दिन गोल्ड स्पॉट ही रखा जाता है। वैसे नाम बड़ा सही था यार तुम्हारा, गोल्ड स्पॉट, बट आई वंडर यही नाम क्यों। एंड वेल शायद कुछ बातें मिस्ट्री रह जाती हैं। अगर तुम आज भी होती तो कहीं किसी न्यूज आर्टिकल में मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाता। इस गर्मी में तुम्हारी ठंडक को याद करती तुम्हारी सारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। और वैसे गोल्ड स्पॉट पीने के बाद जो दिल का हाल हुआ करता था ना, वो इस गाने के जरिए अब आपसे बयान किया जाएगा। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: इस गाने में सवाल है, लेकिन सवाल इश्क पर है, और मैं तो कहती हूँ कि इश्क अपने आप में ही एक सवाल है, और जिसने ये सवाल समझ लिया ना, अगला काम उसका ये हो जाता है कि समझना उसे ये बवाल है। उदित नारायण विभा शर्मा की आवाज में इश्क मूवी से दिस गाना, इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: इश्क हुआ टन टन कैसे हुआ? अच्छा हुआ, जैसे हुआ। और प्यार चीज ही ऐसी है यार, वाकई में। मतलब इश्क जो है ये एक सवाल बनकर ही रह जाता है। आपको पता ही नहीं लगता यार कि कब आपको मोहब्बत हो जाती है। वो तो बहुत टाइम बाद आपके दोस्त आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये सारे जो तुम्हारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना, ये मोहब्बत के हैं। लेकिन इंसान भी ना बड़ी कमाल चीज है, वो जब मोहब्बत में होता है ना तो वो उसे नकार रहा होता है। कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो प्लान ही नहीं किया था ना कि हमें प्यार में पड़ना है, या हम प्यार में पड़ेंगे, या हम प्यार में पड़ने वाले हैं। लेकिन प्यार चीज ही ऐसी है यार, बिना बताए दबे पाऊं कब आपकी जिंदगी में एंट्री ले लेता है ना, आपको भी नहीं पता लगता। वही वाली बात है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि आसपास के लोग आपको बता रहे होते हैं कि तुम्हें तो प्यार हो गया है, सिम्टम्स वही है कि रातों को नींद नहीं आ रही है, गालों का कलर जो है वो रेड हो रहा है, वो इंसान आसपास कहीं नजर आता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, शर्म आने लग गई है तुम्हें आजकल, सब कुछ ठीक तो है, प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। अगर आपको भी यही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना अपने अंदर, तो समझ जाइए कि आपको लवेरिया हो चुका है। इसी के साथ यही गाना लगाते हुए अब आपसे कहती हूँ, हम हराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझसे मिल लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain.
6: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स

0: शरारत सिखावा नहीं, ये बताइए गर्मी से कैसे बचावा मैं खुद को। यस मिर्ची घड़ी में टाइम भी हो गया है शाम के 4:03, जो अभी भी दोपहर वाली फीलिंग दे रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और बच्चों कैसा जा रहा है वेकेशन का फर्स्ट ऑफिशियल डे? हाँ भाई, आफ्टर ऑल बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए हैं और कई सारे तो ट्रैवल कर गए होंगे अपने अपने होम कंट्रीज के लिए, लेकिन आई एम वेरी श्योर कुछ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो यहीं बैठे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, मैचेस देख रहे होंगे, माहौल बना रहे होंगे। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अब आपको ऑफिशियली समर वेकेशन तो है, लेकिन याद रखो स्कूल खुलते ही एग्जाम की बात भी आएगी, इसलिए पढ़ने लिखने लग जाओ, जो मौका मिला है उसमें बहुत सारा माहौल बनाओ। इन सब के बीच फैमिलीज को बुला रहा है एक शानदार नाइट अंडर द स्टार्स के लिए, कौन सा बीच इंतजार कीजिए। कैसे एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन मैंडेटरी कर चुका है इंडियन एम्बेसी ने, इसके बारे में क्या बताया, कौन सी वो नई मेट्रो लिंक है जो आपको लुसेल ट्राम क्लोजर में काम आने वाली है, यह सब कुछ लेकर आ गया मस्त मौला गौरव। अगले 4 घंटे देश दुनिया की बातें एंड यहां पर अच्छे अच्छे गाने दोनों आपके लिए लेकर गए। नवतेज सिंह रियाल, जरा माहौल बनाओ, बॉम्बे रॉकर्स के साथ मिलकर ये गाना गाओ, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
3: लगा? नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा
3: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
0: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
6: Tarikh par tarikh milti rahi hai, lekin insaaf nahi mila milord.
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरे घर के ड्राइंग रूम में पिक्चर बहुत देखी है, लेकिन अब पूरी फैमिली के साथ बीच के किनारे देखेंगे। वैसे तो दुनिया के और देशों में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे कतर में कुछ भी प्लान होता है तो बड़ा एक्सक्लूसिव होता है, और वैसे ही प्लानिंग हुई है स्टार एट 974 बीच और ये स्टार्स के छाओं के तले बैठे रात के अंधेरे में आप फैमिली के साथ बहुत सारे वॉर्म्थ के साथ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बना रहे होंगे, क्योंकि ये खूबसूरत मौका लेकर आए हैं आपके लिए। ये नाइट अंडर द स्टार्स, ये 974 बीच के पूरी कमेटी आपके लिए तैयार है, जहां पर फेस पेंटिंग, आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग होगी, स्टोरी टेलिंग होगी, फैमिली की गैदरिंग होगी, वो भी तारों के छांव के नीचे। एंड इसके लिए थोड़े बहुत पैसे भी ढीले करने पड़ेंगे। यस, आपको इस दौरान वीआईपी कार एंट्रेंस के थ्रू भी आराम से एंट्री मिलेगी। कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके का अरेंजमेंट है। हालांकि पैसे स्पेशल नीड्स वाले लोगों को बिल्कुल नहीं लगेंगे, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। सो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं, और 974 बीच पर होने वाले इस अनोखे नाइट अंडर द स्टार्स का हिस्सा बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट भाई, दुनिया के वन ऑफ द बेहतरीन स्टेडियम्स में से एक, जहां पर कह सकते हैं कि कंटेनर का इस्तेमाल कर एक टेम्पररी स्टेडियम बनाया गया, लेकिन अब वो हमारे दिलों में लेकर हमारे यादों में एकदम से परमानेंट छप चुका है। उसके बैकग्राउंड पर होने वाला ये अपने आप में एक अनूठा इवेंट है 974 बीच पर। जाइए अभी भी मस्ती कीजिए, रात के टाइम कतर में बारबेक्यू पार्टी करने का एक अलग ही मजा है। यू शुड गो वॉच एंड फन एंड एंजॉय, एंड हबीबी आई वेलकम यू एट 974 बीच। थोड़ा पैसा भी ढीला करना पड़ेगा, बट कोई मुश्किल नहीं, हमारे कतर में आप जो एक्सपीरियंस ले पाते हैं ना, वो दुनिया में कहीं भी इतने कम पैसे में ले नहीं पाएंगे। लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: अरे आवन जावन देंगे, लेकिन उसके लिए खिलौने वाले शहर भी तो जाना पड़े।
1: मस्त मौला गौरव।
0: हाँ जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ है। और बर वो समय आ गया जब हमारे कतर में हमें फिर से अपने बचपन को जीना है, क्योंकि DECC में हमारा असली बचपन का प्यार खिलौना है।
2: #974
0: Yes, हम आपको बता दें, अब एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, अपने बचपन को एक बार फिर से जगाइए, क्योंकि 1st जुलाई से 31st जुलाई हमारे कतर में रौनक लगने वाली है कतर टॉय फेस्टिवल से। यस, दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर बचपन के हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए टॉयज की दुकानें होंगी, शोज होंगे, फन जोन होगा, और बच्चों के लिए वो सब कुछ होगा जो उनके लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बनकर आए। डैडी मामा थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। एंट्री टिकट जहां 50 कतरी रियाल होगी वीकडेज पर, वहीं वीकेंड पर 70 कतरी रियाल। लेकिन बड़ी बात यह, अगर आप 5 की फैमिली हैं तो आपके लिए मौका है ग्रुप टिकट 200 रियाल में खरीदने का, और फॉर वीकेंड्स 280 रियाल। वेल, कुल मिलाकर एक जबरदस्त एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए एक बार फिर से, क्योंकि मैं बता रहा हूं हर साल ये एक्सपीरियंस इतना बढ़ता जा रहा है ना कि हमारे अंदर के 2-3 बच्चे जग गए, जबकि हम अकेले ही बच्चे थे। वैसे कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि कतर टॉय फेस्टिवल इज ऑल सेट। 1st जुलाई से 31st जुलाई हमारे कतर में रौनक लगेगी DECC के इसी कतर टॉय फेस्टिवल में। तो मौका आ गया है, अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, क्योंकि जब तक वो अंदर का बच्चा जिंदा है ना, हम दुनिया से कहीं ना कहीं मोह माया रखते हैं। 89.6 मिर्ची वन अंकल, हमको भी लेके चलिएगा इस मेले में। इट्स ऑट
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: हम अकेले ही बच्चे थे, वैसे कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि कतर टॉय फेस्टिवल इज ऑल सेट। 1st जुलाई से 31st जुलाई हमारे कतर में रौनक लगेगी DECC के इसी कतर टॉय फेस्टिवल में। तो मौका आ गया है, अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, क्योंकि जब तक वो अंदर का बच्चा जिंदा है ना, हम दुनिया से कहीं ना कहीं मोह माया रखते हैं। 89.6 मिर्ची वन अंकल, हमको भी लेके चलिएगा इस मेले में। इट्स ऑट
3: शाम शानदार।

0: रे चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा,
9: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मन भले ही उड़ जाए लेकिन दिमाग तो उड़ गया भैया इतनी गर्मी में। यह जबरदस्त वाली गर्मी, दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब मौसम अब धीरे धीरे अपने चरम रूप की तरफ तो बढ़ ही रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: देखिए ह्यूमिडिटी ने अपना पारा बढ़ा दिया है, 44% तक पहुंच गई है। ड्यू पॉइंट 23 इज राइट नाउ। अगर बात करें हवाओं का रुख, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल जरूर रहा है। ह्यूमिडिटी के आगे सब बेबस है। मैक्सिमम टेम्परेचर जहां आज 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, मिनिमम 28। लेकिन बड़ी बात यह है कि ह्यूमिडिटी के चलते ये जबरदस्त गर्मी की फीलिंग आ रही है। तो बाहर है, पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, मस्त मौला गौरव के साथ मिर्ची सुनते रहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट यहां लगातार चल रहा है, इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे। मिर्ची शॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: आए हाय क्या गाना है, पुराने गाने की याद ताजा कर देता है ये वाला भी। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 5:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: तो देवी और सज्जनों बारी आ गई खेलने की, शाम 5 बजते ही
2: पहचान कौन,
0: एक आवाज जाएगी आपके कानों में और आपको बताना है कि ये आवाज तो गौरव इस एक्टर की लग रही है।
3: सॉफ्टवेयर और MBA का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब छोड़कर अब युवाओं को कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर, वैसे भी
0: बेबाक बोल के लिए बड़े जाने जाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं एंड बहुत अच्छा जज भी करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस को। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और बताइए ये आवाज जो मैं सुना रहा हूँ ये किसकी आवाज है।
3: सॉफ्टवेयर और MBA का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब छोड़कर अब युवाओं को कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर, वैसे भी
0: हाँ जी 5000196 पर अब आपको जवाब भेजना है कि हमारा गौरव ये जो आवाज सुनाई आपने ये तो हमें फला एक्टर की लग रही है। 5000196 पर मैंने हिंट में इतना ही कहा है कि ये बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस को जज भी करते हैं एंड शानदार व्यक्तित्व हैं। वेल 5000196 पर मस्त मॉडल गौरव को वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए। कॉल आने शुरू हो गए हैं, वॉइस नोट में अपना जवाब भेजो भैया रिकॉर्ड करके ताकि पूरा कतर आपका जवाब सुने। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. É a bala. Burga, burga. Na vida, bala, burga.
1: हेलो हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
1: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
1: मैंने ही काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
1: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
1: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
1: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
2: 17.5 रुपए
1: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
1: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कू।
2: सॉरी
1: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
3: Catch Officer Brown.
6: Officer Brown.
3: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
6: जबरदस्त ट्रैक्स।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: और देवी और सजनों, ज्यादा नहीं कहता, बस इतना ही कहता हूँ कि जब सवाल पूछे तो जवाब आ ही जाता है।
1: पहचान कौन?
0: और आज के सवाल के जवाब में मैंने पूछा था कि बताइए ये किसकी आवाज है जो आप सुन रहे हैं।
2: सॉफ्टवेयर और MBA का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब छोड़कर अब युवाओं को कारपेंटर, वेल्डर और प्लमर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। वैसे
0: अब हमारे मिर्ची लिस्टर है तो फटाफट बता रहे हैं, बताइए। जी जी,
3: हाय गौरव, दिस इज जिग्नेश। अभी आपने जो आवाज सुनाई मुझे, ये आवाज शेखर सुमन की लग रही है। थैंक यू
4: जी गौरव भाई, ये शेखर सुमन का शेखर सुमन की आवाज है।
5: हाय रेडियो मिर्ची, दिस इज सैयद आफताब एंड द वॉइस वाज फ्रॉम शेखर सुमन, द स्टैंड अप कॉमेडियन।
6: ओके, मस्त मौला गौरव, दिस इज योगेश एंड द आंसर इज शेखर सुमन।
7: सिद्धू की आवाज है, वो कपिल शर्मा शो पे जज करता है ना, पहले क्रिकेटर भी था, उसी का।
0: नहीं नहीं नहीं, त्रुटि हो रही जी।
3: शेखर सुमन।
0: ओके
8: ओके। हेलो गौरव भाई
0: जी,
8: मेरा नाम प्रतीक है, आपका ये शो हमेशा ही सुनता रहता हूँ मैं
0: जी। प्रतीक भाई, थैंक यू।
8: मेरी वाइफ को ये क्या बोलते हैं, उनको ये विश्वास नहीं आता कि मैं आपको मैसेज करता हूँ और आप मेरा आवाज ले सकते हो।
0: तो
8: मुझे इस बार आपको यही बताना था, और मुझे ये भी बताना है कि ये शेखर सुमन की आवाज है। शेखर,
0: अरे क्या बात है,
8: तो आप ये प्ले करना प्लीज। थैंक यू सो मच।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज प्ले कर दी मेरे भाई। यस, शेखर सुमन इज द राइट आंसर। एंड इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने लिख के बताया, यूसुफ भाई ने आज लिख के बुलाया शेखर सुमन। इसके अलावा थैंक यू कहना चाहूंगा मैं निशत को जिन्होंने शेखर सुमन लिख कर भेजा है, एंड कुछ ऐसा ही किया है तौफिक भाई ने, शेखर सुमन वॉइस। खैर कुल मिलाकर आदिल भाई आपने बिल्कुल सही बताया है। इसके अलावा हसन जी को थैंक यू कहूंगा, शेखर सुमन इज द राइट आंसर। इसके अलावा अतुल भाई ने लिखा है शेखर सुमन। यार आज मुझे लगता है ये मुझे लगा था कठिन होगा, लेकिन 100% सही जवाब आया है। एक भाई साहब को छोड़ दें, जो कंफ्यूजन हो मुझे लग रहा है सिद्धू पाजी बोल गए, क्योंकि सिद्धू पाजी के साथ ही शेखर सुमन जी कॉमेडी शो को जज भी करते थे एक टाइम पर। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त बोलो गौरव आपके साथ शाम शानदार। मिर्ची था
9: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
7: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100813।
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

क्या आप भी दोहा मेट्रो लुसेल ट्राम के लवर हैं? तो अगली खबर आपके लिए यस मस्त मौला गौरव लेकर आया है वो इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी है जनाब M154 के बारे में। रबदत्त लुसेल ये नई बस सर्विस का नाम है। यस आपको पता ही होगा कि लुसेल में एक टेम्परेरी क्लोजर चल रहा है। अगर हम ट्राम स्टेशन की बात करें उसको अपग्रेड करने के लिए ये पूरा का पूरा अभी जो मेट्रो का ट्राम नेटवर्क है वो बंद है, और ऐसे में ट्राम नेटवर्क के सस्पेंड होने से इस दौरान लोगों को प्रॉब्लम ना हो M154 मेट्रो लिंक रबदत्त लुसेल में लॉन्च कर दी गई है, और ये बहुत सारे इलाकों को कवर करेगी जैसे कि लुसेल स्टेडियम, अलखेल स्ट्रीट, रबदत्त लुसेल, डाउनटाउन लुसेल, फॉक्सिल नॉर्थ, अल यास्मीन सीफ लुसेल, नॉर्थ क्रेसेंट पार्क, इरकिया, ये सारे के सारे रूट्स को कवर करेगी। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। घबराना नहीं है, बस ये समझ लीजिए चंद दिनों की दिक्कतें, उसके बाद जब वो पूरा का पूरा ट्रामवे अपग्रेड हो जाएगा बहुत सारी सहूलियतें भी आएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए M154 ये एक ऐसा सहारा बनी है जो इस पूरे इलाके में एकदम ट्राम वाले की तरह ही आपको पहुंचाएगी जैसा हमारी ट्राम सर्विसेज पहुंचा रही थी। लेकिन थोड़े दिनों की ये तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी, तभी जाकर आने वाले टाइम में सुनहरा ट्राम का सफर फिर से शुरू होगा। वेल अगर आप लुसेल वाले इलाके में हैं तो आप इस बस की अहमियत को समझ रहे हैं, एंड आई एम श्योर अब ये आप तक पहुंच भी गई होगी। अगर नहीं पहुंची तो मैंने पहुंचा दी, और अपने दोस्तों यार को भी बता दो अगर वो आपसे परेशान होकर ऑफिस में इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं तो। मिर्ची चाट।

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

हाँ जी, जब एक्सचेंज रेट अच्छे हो तो खुशियों के साथ पैसे भी घर चले ही जाते। लेकर आया कौन है ये? वेल देवी और सजने, तो ही कहना चाहता हूँ कि करेंसी के रेट्स इस वक्त जैसे चल रहे हैं, लगता है काश होते तो भेज देते। वेल राइट नाउ एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 25.91 25.91 रुपए भारतीय मुद्रा में। वहीं एक कतरी रियाल के बदले अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज की 92.44। इसके बाद अगर बात करें हम नेपाल रुपीज की जनाब, तो आपको मिलने वाले तपाईँको हजुर 41.36 41.36 का भाल छ रेट है बहिनी। अगर घर भेजना राइट टाइम छ दाजो 41.36 नेपाल रुपीज का रेट छ। और इसके बाद हम जनाब पाकिस्तान रुपीज की बात करें तो वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.85 पाकिस्तान रुपीज। और बांधु बांग्लादेशी टका दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.90 तो 33.90 बांग्लादेशी टका का रेट। ये था मस्त मौला गौरव के साथ आईपे एक्सचेंज रेट। आईपे से घर पैसे भेजो, खुशियां भेजो और खुद के लिए वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन भी आ जाओ। मिर्ची थॉट देखो।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हल्का हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: आनंद राज आनंद और रुबाई की आवाज में ये गाना हमने सुनाया है। और घड़ी का टाइम बता दें, 6:05 होने को आ गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और ऐसे में मस्त बोला गौरव, बस यही सोच रहा है देवी और सजनों सब कुछ ठीक है तो इस घंटे वो खेलते हैं जिसे हम कहते हैं
1: गानों की मिक्सी
0: में हम पीस देते हैं दो गानों को और आज जिन गानों को पीसा है आपको पहचानना है।

हाँ जी 5000 1896 पर अगर आपने दोनों गानों को पहचान लिया है तो इंतजार मत कीजिए, गानों के मिक्सी में हमने किन दो गानों को पीसा है इसका वॉइस नोट में जवाब भेज दीजिए।

यो हनी सिंगर, ये लाइन आपको सुनाई दे रही होगी। कोशिश कीजिए, दो गाने हैं और दोनों ही बड़े आसान हैं। अगर दिमाग को घोड़े को दौड़ाएंगे तो ये आप पकड़ ही लेंगे।

5000 वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए। मसवरो गौरव इंतजार कर रहा है देवी और सजनों, जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजो। देखे गानों की मिक्सी आज किसने किसने पकड़ी, मिर्ची थॉट।

5000196 पर अगर आपने पहचान लिए दोनों गाने तो वॉइस नोट पर अपना जवाब भेज दो, लिख के भेज दो, लेकिन जल्दी जल्दी भेजो, अब से थोड़ी देर में मैं जवाब के साथ लौटूंगा। ये जरा ध्यान से सुन लो कि ये कौन से दो गाने हैं।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: इज दैट वर्षा?
3: हु इज दैट?
4: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
3: क्या नाम बताया आपने?
4: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
3: थोड़ा बहुत गा लेती
4: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
3: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
3: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
4: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊंचाई है जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: ओ, मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊंचाई तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भैया संगमरमर की मीनारे सुनो, हम तो अपने साथ कुछ और सुनवा रहे हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: देखिए भाई, हम शाम 6 बजे चलाते हैं गानों की मिक्सी।
2: गानों की मिक्सी
0: और आज जिन दो गानों को हमने मिक्स किया है वो कुछ यूं हैं।

0: ज्यादातर लोग लिख के बता रहे लेकिन किसी ने बोल कर बता दिया है, तो आइए सुने।
1: Hey Gaurav, good evening. The songs you played are, the number one was Yo-Yo Honey Singh Brown Dunk and the second was Cutie Pie from Ae Dil Hai Mushkil.
0: Okay, thank you. जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है ये। Yo-Yo Honey Singh का Brown Rang Te, Kudiye Ni Tere Brown Rang Te, हाँ जी, और इसके अलावा दूसरा गाना था Cutie Pie, और यही जवाब बताकर आज एकदम से खुश हो गई हैं, इनके स्माइली आ भी चुके हैं। वेल, ये आपका सही जवाब है, नाम पूछना भूल गया, बट यस, मस्मोल गौरव इतना ही कहेगा कि रोज गानों की मिक्सिंग खींचिए और बताइए कि गौरव हमारे इसमें तो ये दो इंग्रेडिएंट्स पड़े। अगला गाना करण औजला ने कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के बनाए, तो वो सुनते हैं। इसमें ताई जी की बात भी होती है, मिर्ची इट्स हॉट।

नजर ना लगे, वो अपने काम से एकदम मस्त रहे और उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी कुछ काम किया जा रहा है। अगर आप सोच रहे कौन, तो बता दें कतर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लेबर लॉ नंबर 9/2026 जो कि इशू किया गया था ज़ाइनस ज़ियामिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनके एक सिग्निफिकेंट स्टेप को यहां पर आगे बढ़ाया गया एंड कह सकते हैं कि लेबर लॉ के रिफॉर्म्स को लेकर आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ी चीजें होंगी जो कि मार्केट एफिशिएंसी को बढ़ाने जा रहा है। Yes, in line with Qatar National Vision 2030, कुछ बड़े चीजों का डेवलपमेंट किया गया है लेबर मार्केट को फोकस करते हुए, किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, इस पर बातें की जाएंगी एंड इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स दोनों बैलेंस रहे इसका भी ध्यान रखा जाएगा। पार्ट टाइम एंड फ्रीलांस वर्क लीगलाइज किया जाएगा, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि फ्रीलांस एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ताकि टैलेंट को हायर किया जा सके और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने काम को कर पाए। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज वो सही किया जाएगा, वहाँ धोखेबाजी वाला कोई काम नहीं होगा। नॉन कम्पीट रूल्स के क्लियरर तरीके होंगे। फास्टर लेबर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होने जा रहा है एंड ज्वाइंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कमिटीज बनाई जा रही हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रॉन्गर वेज प्रोटेक्शन यानी कि उनकी तनख्वाह की जो दिहाड़ी की बात करी जाए तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर भी कुछ और बड़े रिफॉर्म्स लाए गए हैं और ये रिफॉर्म इसी काम आने वाला है कि यहाँ की लेबर इंडस्ट्री और मजबूत हो जाए। यस, और मजदूर भाइयों के साथ सिर्फ न्याय हो, किसी तरह का न्याय ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपने यहाँ कुछ लेबर लॉ रिफॉर्म लाए हैं जो कि मार्केट एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हुकूमत को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, जो मजदूरों के लिए ये बड़ा डेवलपमेंट का स्टेप लेकर आए हैं ताकि उनके लिए यहाँ पर काम करना आसान हो और वो ज्यादा एंजॉय कर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट है।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
7: Love is my biggest fear because for me love is death.
6: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
8: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी है।
6: Catch Officer Brown tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.
9: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
10: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
11: आएंगे दीदी।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: आज एक मैच को देखा तो ऐसा लगा कि फुटबॉल में वाकई में लास्ट मिनट में भी कुछ हो सकता है। मस्त मौला गौरव आपके साथ। देवी और सजनों, फुटबॉल वर्ल्ड कप में तो आज खेला हो गया खेला।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
0: स्पोर्ट्स अपडेट में सबसे पहले आज आखिरी दो टीमों की बारी थी कि कौन सी टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचेगी। अल्जीरिया वर्सेस मैच था ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एक शानदार फुटबॉल मैच जहां पर अल्जीरिया ने आखिरी मोमेंट में गोल लगा दिया था और 3-2 से लीड कर रहे थे। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाता और ईरान अंदर आ जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 20 सेकंड के अंदर गोल कर दिया और 3-3 की बराबरी पर मैच छूटा और इसके चलते ईरान बाहर हो गया और ऑस्ट्रेलिया अल्जीरिया दोनों क्वालिफाई कर गए। और अब राउंड ऑफ 32 की 32 टीम्स हमारे सामने हैं। साउथ अफ्रीका, कनाडा, नीदरलैंड्स, मोरक्को, जर्मनी, पैराग्वे एंड इसके अलावा फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, सेनेगल, यूएसए, बोस्निया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, क्रोएशिया, ब्राजील, जापान, कोता द्वारा आइवरी कोस्ट एंड नॉर्वे, मेक्सिको, इक्वाडोर, इंग्लैंड, कांगो, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, कोलंबिया, घाना, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, काबो वर्दे। बिल्कुल मिलाकर इन 32 टीमों में से ही अब कोई वर्ल्ड कप उठाएगा, लेकिन एक एक कर अब सबका नंबर आएगा। इसमें से जो जो हारती जाएगी वो बाहर होती जाएगी, जो जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ जाएगी एंड उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं, वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी चरणों की तरफ बढ़ रहा है। नॉकआउट स्टेज, बहुत सारे मैचेस में हो सकते हैं हमें पेनाल्टी शूटआउट देखने को मिले। तो ये रहा फुटबॉल का लेखा जोखा जो वर्ल्ड कप में हो गया है। और दूसरी तरफ आज बात करेंगे क्रिकेट में हो रहे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की। यस, वुमेन्स टीम का ये मैच जहां पर इंडिया के लिए जीत बहुत जरूरी है। इंडिया ने लक्ष्य दिया है 171 का एंड ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 6 ओवर 1 बॉल में 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इंडिया अगर इस मैच को हारता है तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल आयरलैंड से पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया की आज दूसरा हारेगी, क्योंकि जीतने के लिए 155 चाहिए और हमारी टीम इंडिया 64 पे 4 संघर्ष कर रही है। पहली बार हम आयरलैंड से किसी फॉर्मेट में उस दिन हार गए थे, क्या आज भी ये दाग लगेगा? भैया हमारे सरपंच साहब को कुछ करना होगा, बड़ी बेइज्जती हो रही इनकी कप्तानी में। मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mitchy helpline.
1: Hi there. What's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख रख
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: आना हुआ खत्म और आपके साथ आ गया कौन? मस्त मौला गौरव आपके साथ देवी और सजनों, शाम के बजकर 7 मिनट हो गए 3।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: इंडिया जाने वालों अपना कान जरा ध्यान से सुन के लगा लो।
2: #974 the most trending local news of the day।
0: यहाँ पर मसमोलो गौरव आपको बताना चाहता है कि कतर में हमारे इंडियन एम्बेसी ने कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं और ये है एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन को मैंडेटरी बनाने के बारे में। यस, इंडियन एम्बेसी दोहा ने सभी उस इंटरनेशनल ट्रेवलर को कहा है जो इंडिया के लिए उड़ान भर रहे कि आपको इंडिया पहुंचने से 24 घंटे पहले एयर सुविधा का एक फॉर्म भी भरना है। यस, ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग इन इंडिया, इन्हें मैंडेटरी ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और अपनी जर्नी के 24 घंटे पहले इसे सबमिट कर देना है। इस बात को याद रखिए, एम्बेसी ने जोर देकर कहा है कि ये बेसिकली आपके लिए क्या करेगा, ये आपके लिए फास्टर, सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस कराएगा। यानी कि अगर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो आपके पास मौका होगा बिना किसी के टच किए आराम से सीमलेस तरीके से आप इंडिया में इमिग्रेशन क्लियरेंस कर लेंगे, हेल्थ स्क्रीनिंग भी हो जाएगी और ये सब कुछ इबोला को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। यस, इबोला जो कि अफ्रीका से एक वायरस आया है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। एम्बेसी ने ये भी कहा है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दीजिएगा अपने ट्रेवल हिस्ट्री की, पिछले 21 दिनों में अगर आप कहीं गए हैं आए हैं तो भी बताइएगा, और किसी भी तरह का सिम्टम या एक्सपोजर लगता है आपको किसी तरह से हुआ है, आपके हेल्थ पे कुछ असर है तो वो भी जरूर क्लियर कीजिएगा। इंडियन एम्बेसी इन दोहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सारे करेक्ट तरीके बताए हैं और एयर सुविधा का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, airsuvidha.civileviation.gov.in। आई रिपीट, airsuvidha.civileviation.gov.in। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए भला नहीं करते हैं, आप दूसरों को भी बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। इस बात को समझिए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने की?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी,
1: रखा
0: मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
4: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरे शेर खुल गए और अब शेर घर में एकदम खुल के टीवी भी देख रहे हैं। अरे बच्चों की बात कर रहे हैं, वेकेशन ऑन होते ही इनकी टीवी पर पकड़ मजबूत हो जाती है। टीवी में गेमिंग से लेकर टीवी पर वीडियो वॉच करना, यूट्यूबर्स को देखना, यही तो इनका काम है। कि फिलहाल बच्चों के लिए एक और अच्छी चीज आई है, उसके बारे में बता देते। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन्वाइट कर रहा है अ नाइट अंडर द स्टार्स, एक कम्युनिटी इवनिंग इवेंट जो कि 974 बीच पर होने वाला है 3 जुलाई को शाम 7 बजे से। यस, शाम 7 बजे से वहां पर होगी मूवी स्क्रीनिंग। इसके अलावा आपके बच्चे वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। एंड एक डेडिकेटेड फैमिली गैदरिंग हो रही है जो कि बीच पर हो जा रही है, इसमें स्टोरी टेलिंग भी होगी। मूवी स्क्रीनिंग के अलावा फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज होगी, पेंटिंग होगा, एक तरह से एक ऐसी इवनिंग जिसको आप बहुत समय तक याद रखेंगे। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए ये अंडर 14 15 रियाल है, एडल्ट्स को 35 रियाल देने, और वीआईपी व्हीकल एंट्री भी होने वाली है 150 रुपए में। कार अंदर एकदम टकाटक, मजे लीजिए, मौज कीजिए, और इस फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी का जो कि 974 बीच पर होने जा रही है हिस्सा बनिए। अ नाइट अंडर द स्टार्स। दुनिया में बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन हमारे कतर में कोई भी इवेंट होता है उसका अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सो हबीबी, वेलकम टू 974 बीच, अ नाइट अंडर द स्टार्स एट July 3rd 7 PM इवनिंग 89.6 मिर्ची 1 हरारा खतीर। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

वो कार याद है जिसको आप जमीन पर चलाते चलाते सोफे पर ऐसे उड़ाते थे मानो उसमें पंख लग गए और वो उड़ रही है, या फिर वो गुड़िया जिसकी शादी आपने धूमधाम से गुड्डे से कराई थी और गुड्डे से कराने के बाद घर में खूब धूम मचाई थी। भाई हमारे दौर में खेल कूद की दुनिया कुछ यूं ही होती थी, खिलौनों से ही असली प्यार होता था। और अगर आप खिलौनों से प्यार करते हैं तो फिर आपको ये सुनना पड़ेगा कि हमारे कतर में तैयारी हो गई है। यस, टॉय फेस्टिवल धूम धड़ाके के साथ एक बार फिर से वापस आ रहा है दोस्तों। यस, कतर टॉय फेस्टिवल 1 जुलाई से हमारे कतर में 31 जुलाई तक चलेगा और रोज दोपहर 2 बजे से देर रात 10 बजे तक, वीकेंड्स पर रात 11 बजे तक ये धूम रहेगी दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में। इस बार ये और बड़ा एंड कहा जा रहा है खिलौनों से ही असली प्यार होता था। और अगर आप खिलौनों से प्यार करते हैं तो फिर आपको ये सुनना पड़ेगा कि हमारे कतर में तैयारी हो गई है। यस, टॉय फेस्टिवल धूम धड़ाके के साथ एक बार फिर से वापस आ रहा है दोस्तों। यस, कतर टॉय फेस्टिवल 1 जुलाई से हमारे कतर में 31 जुलाई तक चलेगा और रोज दोपहर 2 बजे से देर रात 10 बजे तक, वीकेंड्स पर रात 11 बजे तक ये धूम रहेगी दोहा एग्जीबिशन

मोबाइल से निकल कर इस बर्थडे वाले गेम जोन में आओ, सारी मस्ती सारा फन आपके लिए वेट कर रहा है। 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है कतर टॉय फेस्टिवल। 89.6 मिर्ची 1 अंकल हमको भी लेकर चलेगा, मैं टिकट प्राइस दे दीजिएगा। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आमिर खान पीके वॉज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। विच वन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट, रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

एजुकेशन भी सबको मिले, यही तो हमारा कदर चाहता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने जो अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव चलाई थी, जिसमें वो प्राइवेट स्कूल के साथ पार्टनरशिप में किंडरगार्टन के साथ मिलकर यू नो फ्री एंड डिस्काउंटेड एजुकेशनल सीट्स लेकर आए थे, उसमें 9,000 से भी ज्यादा बच्चों को फायदा मिला है। यस, 9,000 फ्री एंड डिस्काउंटेड एजुकेशनल सीट्स इसके अंतर्गत आई, ताकि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और कोई भी बिना पढ़े लिखे ना रहे, इसका ध्यान रखा गया है। 9,000 फैमिलीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका हिस्सा बनकर खुश होंगी। एंड आई एम श्योर जिस तरह से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन का इनिशिएटिव है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये फायदा मिलेगा। वेल, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी मुल्क की तरक्की उसमें आने वाले युवाओं के पढ़े लिखे होने से होती है, और कतर इस बात को समझता है। एंड यहाँ के इस इनिशिएटिव के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड मुझे पूरी यकीन है आने वाले टाइम में इसमें और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, और कल जिनसे चलने वाला है उनको आज ही से हम तैयार कर रहे हैं। 89.6 मिर्ची 1 पर मी सिंह टर्बो बाय, लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में। तब तक कान लगा के गुल्लक मिर्ची, इट्स हॉट।

हसीए कई जो बरसा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Hello, hello, Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest pop music of the week. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest gaanon mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hone wala hai. A special Gaana spotlight, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10. Pichle hafte se pure 5 position niche drop hoke Anoop Jain ki awaaz mein unka gaana arz kiya hai. A Coke Studio Bharat song is this week on Gaana number 10. उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है. गाने का नाम है साडी सुन. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर. इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक. अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साडी सुन ऑन गाना नंबर 9 ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेगा. एंजॉय. नंबर 10.

0: obviously जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उनकी कॉम्पोजिशन अलोंग विद दीप क्लेयर, उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna ho, kissa, kahani, kuch bhi batana ho. @RJKanika on Instagram par aake quickly hit me up. गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। सो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेज को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: हाँ वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Rambala.
2: Murga, murga. Nabiyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: हेलो
5: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
4: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
4: क्या तुझे पागल लग
5: नहीं
4: रहा
5: है? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
4: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन,
12: इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10
13: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
14: Number 6.

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खान रावटोर का म्यूजिक. गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ. इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो. इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अश्काय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

और बाय कुमार सानू। ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात। आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट। एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट। This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video. मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था, ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे। What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को इनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, व्हिच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक। दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट RJ करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज ये से गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ना एट RJ कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ संजू राठौर इज बैक एंड हाउ दिस टाइम विद बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5 यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका एंजॉय नंबर 5

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
8: Gaana
0: Indie Top 10
8: Kanika ke saath on Mirchi।

0: सिया की आवाज डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Karenga ke saath, this is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Yahan par hum aane wale gaano ko discuss karte hain. Kaun naye collaborations ho rahe hain, kiska gaana hua countdown se out, ya kaun sa gaana ho sakta hai in. गाना नंबर 4 पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल्ड अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. दिल ना जाने एंड ये दोनों आइकॉनिक आर्टिस्ट आती हैं टू क्रिएट नागिन, विच आई एब्सोल्युटली लव। इवन 2019 से 2026 तक आई कैन नॉट नेम अ लॉट ऑफ फीमेल डुओ पॉप सॉन्ग्स। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हियर्स मी पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स, आस्था एंड अकासा, वी नीड अ न्यू सॉन्ग फ्रॉम यू। दिस इज नागिन ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर।

पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। दो साल पहले सुनिधि

दसांज वंस अगेन विद अ सॉन्ग डीलर 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: ट्रेंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM Mirchi 1 It's hot.
0: Ghana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap, show ka naam hai Ghana Indie Top 10, bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ka report card hum aapke liye lekar aate hain. Instagram par jaye, connect with me, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai ya kisi gaane ke bare mein kuch sawal hai, hote hain yaar, antshant aate hain par maze aate hain mujhe, @RJKanika par aao bindaas aake hit me up. It's time for the top 2 songs of the week, but before that let's do a round up right from the top. Anuv Jain ka arz kiya hai was this week on Gaana number 10.
7: Kaayar jo the wo shayar bane.
1: Nayi Naveli entry Harsh Nussi ka Saadi Sun on Gaana number 9.
8: Akhiyan na akhiyan mulaat sahi saadi sun apni sanaat sahi.
1: Anish Sarkar Hruday ka Udi Udi on Gaana number 8.
9: Zori chunari aayu
1: MC Square ka Long Way From Home on Gaana number 7, then Aditya Rikhari Ravator Kutle Khan ka Ae Ajnabi on Gaana number 6. Ae
10: Ajnabi dil ki lagi ka.
1: Sanju Rathore ka Bangles on Gaana number 5.
11: Lal color ki bangdi, bangdi ka color lal.
1: Diljit and Sia ka Ranjha on Gaana number 4. Diljit yet again with Dealer on Gaana number 3. The top 2 songs of the week, Mitta Roar and Swara.

0: शर्मा की आवाज में शीशा कंपोज्ड बाय मिट्टा रॉड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक, गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे. 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1. शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय.
1: नंबर 2.

0: Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
2: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
3: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: के पल में फिक।
1: सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आर डी बर्मन, दी आर डी एक्स ऑफ म्यूजिक।
2: और वो जिस भी सुर में रोते हो,
1: जो असला बारूद उन्होंने म्यूजिक का क्रिएट किया है ना, वो फिनोमिनल है। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने पहले सुपरहिट गाने, इस ट्रेंड सेटिंग गाने के बारे में क्या कहा था।
3: ये एक कमाल चीज है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाए, वन टेक ओके होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये साहब कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज है। नासिर, आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे गिर पड़ा था, बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात बोल दी, और कौन कह रहा है, शम्मी कपूर कह रहा है। तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि उसके बाद काफी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज टाइप की म्यूजिक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूजिक, रॉक टाइप की म्यूजिक, वो इंडस्ट्री में काफी लोग ने शुरू किया।
1: तो सुन लेते हैं ट्रेंड सेटिंग गाना ऑन आर डी बर्मन स्पेशल पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं
1: बोल, कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कू।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans par RD Burman Special. Charu ke saath. Only on.

धोख दूं पाए लागू आरडी बर्मन साहब के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाना हैंड्स डाउन उनका वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशन है, सत्ते पे सत्ता का ये गाना, जिसमें बहुत सारी आवाजों में खुद आरडी बर्मन की आवाज भी थी। एज अ सिंगर

0: और उससे जुड़े एक इंसिडेंट के बारे में सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ ना कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज निकले। मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था, यमा यमा जो गाना किया था, जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब। तो रफी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, अब बाद में हम डब करेंगे। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूं, तो प्लीज ये हाँ जरूर एक डेट फिक्स करते। लेकिन इट्स सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए, तो वो वैसे का वैसे गाना रह गया।
0: तो चलिए इन दोनों लेजेंड्स को याद कर लेते हैं ये गाना सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: बहुत हैरत की बात है कि आरडी बर्मन जैसे म्यूजिशियन को अपने करियर में कुछ खास अवार्ड्स नहीं मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन अवार्ड्स में काफी मैनिपुलेशन होता था या बायस भी होता था, और इन सब चक्करों में आरडी बर्मन काफी सीधे साधे भोले भाले रह जाते थे। इनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया जाता था कि ये मॉडर्न म्यूजिक वाले गाने ज्यादा बनाते हैं, क्लासिकल वाले नहीं। पर ये बंदा तो मस्त मलंग था, मन की करता था। इस बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था।
1: मैं बहुत कुछ क्लासिकल तो सिखा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं राग झिंझोटी में मैं और मालकोस में ये कोशिश की, ऐसा तो हम कहते नहीं। हमको जो दिमाग में आता है और जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम बनाते रहते हैं। वो कभी कभी राग में भी आ जाता है, कभी राग भ्रष्ट भी हो जाता है।
0: राग भ्रष्ट हो जाता है कितने क्यूट है यार। एक बार सुनिए अपनी टूटी फूटी हिंदी बोलने के बारे में एक बार क्या कहा था इन्होंने।
2: और माफ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि मैं बंगाली हूँ।
0: वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो जुबान बोलते थे वो सबको समझ में आती थी, प्यार और संगीत की। पुरानी जीन्स पर आज आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जींस पर आर डी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
3: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100/100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 89.6
8: 89.6 FM।

0: उम्मीद यादों का दिल खो जाता है।
1: ये जोड़ी जैसी जमी थी ना, ऐसी जोड़ी कोई जम नहीं सकती है फिर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, द लेजेंडरी जोड़ी ऑफ आर डी बर्मन एंड आशा भोसले जी। आशा भोसले जी के एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था कि आर डी उनके लिए क्या थे।
2: एक तो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरा बहुत अच्छा फ्रेंड और बड़ा ही मूडी फ्रेंड। उसकी एक छोटी सी बात बोलते उसके सामने चाय रखा तो पहले उसमें पानी डाल देता था और फिर पीता था। तो मैं हमेशा सोचा करती थी फिर चाय क्यों मंगा, ऐसे अच्छा गर्म पानी मंगाता या ठंडा पानी मंगा। लेकिन ऐसे उसके अजब मूड थे, सिगरेट जला के रखेगा वो सिगरेट पूरी जल जाएगी वहीं पड़ी पड़ी, फिर दूसरी जलाएगा, ऐसे सिगरेट जलाता रहेगा। लेकिन सोच में इतना मूडी था। पंचम ऐसा दोस्त था कि ये सुन ये गाना कैसे है, ये सुन ये साउथ अमेरिकन म्यूजिक सुन, अभी अफ्रीकन सुन, अब ये सिंगर, और इसमें हम पूरी रात इसके निकल जाती थी। तो मैं बोलती थी पंचम मेरे को कल गाना रिकॉर्ड करना है, तुम तो सोते रहोगे लेकिन मेरे को बैठे बैठे गाने सुनना, फिर से लगाना फिर से लगाना।
1: तो फिर से लगा देते हैं ये आइकॉनिक गाना आशा भोसले आर डी बर्मन की आवाज में, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, कारवां फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: ¡Bonito!
1: ¿Cómo habla? ¿Dijo? ¿Dijo cómo habla?

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
1: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
2: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स।

0: आरडी वर्मन 1961 से फिल्मों में इंडिपेंडेंटली म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन सक्सेस उनके हिस्से में आया 1966 में विद तीसरी मंजिल का म्यूजिक. क्या ही आइकॉनिक ट्रेंड सेटर, फिनोमिनल म्यूजिक है वो. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. और एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनको इस फिल्म के म्यूजिक का ऑफर मिला और उसके बाद क्या क्या मुश्किल आई.
1: एक दिन क्या हुआ, मिस्टर नासिर हुसैन जी का नाम है, उन्होंने मुझे खबर दी, कहने का आप आइए मुझे सुनाइए आपका कोई अगर स्टॉक वॉक हो तो. उस जमान बहुत हम लोग स्टॉक रखा करते थे. गया जाके उनको सुनाया, हमारे पास जो जो गाना था ट्यून सुनाया, ऐसा कुछ किया तो उनको बहुत पसंद आया. क्या था, उनके जो हीरो था वो देवानंद साहब, कुछ गड़बड़ हुआ, वो पिक्चर उन्होंने किया नहीं. उसके बाद पता लगा कि शम्मी कपूर हीरो हो गया. अब शम्मी कपूर हीरो हो गया तो शम्मी कपूर का तो पूरा किंग था ना, शंकर जी थे, जयकिशन जी थे, सब थे. तो मैं समझा कि मेरा तो पत्ता कट गया. नासिर साहब ने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा एक टेस्ट है ना, आपको जो जो गाना है वो आपको शम्मी कपूर को सुनाना पड़ेगा. तो शम्मी कपूर जी आए हमारे म्यूजिक सेटिंग में, आए बोले आए पंजाब सुनाओ. तो हमने पहली एक फोक ट्यून सुनाया, वो नेपाली गाना था. इतना सुना है तो सेकंड लाइन से शम्मी कपूर गाना शुरू कर दिया.
0: शम्मी कपूर क्या, पूरी दुनिया वाइब कर रही थी इस फिल्म के म्यूजिक के साथ और करती है आज तक. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल.

0: होता है।
1: पुरानी जींस पर आर डी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
2: मिर्ची
3: हेलो।
4: हैप्पी

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता, अब रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं है? राकेश तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने की?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देने चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल, चारू के साथ, ओनली

0: हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यूनिक म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वेल, इस यूनिक म्यूजिक कंपोजर की फिल्म इंडस्ट्री में दो फिल्म मेकर्स के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन थी। एक तो नासिर हुसैन साहब, जिनके साथ तीसरी मंजिल से इनके सफलता की शुरुआत हुई। ये दूसरे कौन थे, इनके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने क्या शेयर किया था।
1: ग्रुप देखो, एक नासिर साहब के साथ तब से मेरा जम जोड़ हो गया। एक मुझे और एक फकर है कि जैसा शंकर जयकिशन जी थे, काफी लोगों के साथ उनका ट्यूनिंग था, उसी तरीके से मेरे साथ ट्यूनिंग भी एक आदमी के साथ हुआ। एक प्रोड्यूसर अजीब प्रोड्यूसर है, जिसके पहली पिक्चर हमने की थी द ट्रेन, मेरे ख्याल से 65-67 की बात होगी शायद। तब से लेके उन्होंने जितने पिक्चर बनाए, दर्जन के ऊपर हो गया पिक्चर, मैं उन्हीं के साथ हूँ। रमेश बहन, दैट्स अ रिकॉर्ड, ये मेरे लाइफ का एक कमाल रिकॉर्ड है।
0: द ट्रेन फिल्म का जिक्र इन्होंने किया। द ट्रेन वही फिल्म है जिसके सुपरहिट गाने का कवर वर्जन बना बना के पब्लिक हटती नहीं है, थकती नहीं है, इतना सुपर फिनोमिनल गाना है वो। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, आरडी बर्मन का कॉम्पोजिशन, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची 1।
9: It's hot।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आरडी बर्मन ना म्यूजिक के लिए ऐसे भूखे प्यासे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसीलिए नए नए तरीके सीखते रहते थे। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या इंसिडेंट शेयर किया था जब म्यूजिक कंपोजर रोशन साहब उनके घर आए थे।
1: तो एक दिन रोशन जी घर पे आए, पिताजी के साथ गुफ्तगू करते रहे, तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी, भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी, ममता बहुत अच्छा गाना बनाया ये। तो उन्होंने कहा आपको शायद मालूम नहीं एक बात सीक्रेट, तो उन्होंने गाना किया था रहे ना रहे हम, उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है उसमें से हमने मीटर ली, मीटर मतलब छंद। तो एक गाना उन्होंने गा के सुनाया, क्यों रोशन जी ने।

बोले कि दा आपका ये इतना प्यारा गाना था, देखिए हमने बना ली। ये सब क्या स्कूलिंग है, तब से हमने क्या किया, कोई गाना हिट गाना हो, ये सब गाने के जो मीटर होता है ना, उसमें से हम लोग कुछ गाने बनाने की कोशिश करते। मिसाल के तौर पर यही गाना देखो, ठंडी हवा का रोशन जी ने बना दिया, रहे ना रहे हम, मैं दूसरा बोल से गाता हूँ, देखो

0: छंद सेम है, सब कुछ वही है, इससे हम लोग नए नए गाने बनाने की कोशिश करते।
1: सागर फिल्म, ये पूरी एल्बम ही क्या एल्बम थी भाई, एक एक गाना इसका नगीना, और ये वाला जो हम सुनने वाले है ना, ये तो उफ तौबा, ये कोई ऐसा प्यार में पड़ा इंसान नहीं होगा जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: 89.6
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ।

0: दो जीनियस लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: भाई ऐसी सिचुएशन में कई बार काम करना मुश्किल हो जाता है।
1: एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने शेयर किया था कि किन के साथ काम करते करते अक्सर वो काफी अटक जाते थे।
2: एक आदमी के साथ तो बहुत अटकता है, उसका नाम है गुलजार। हम एक पिक्चर कर रहे थे आधी आधी में, जो उन्होंने गाने लिख के लाए वो कुछ लैंग्वेज या तो मुझे समझ में नहीं आया ना उसका मीटर समझ में आया। तो मैं बोला देखो भाई ये तो हम काम नहीं कर सकते इस तरीके से। फिर वो बोलने लगा यार तू थोड़ा ट्राई कर यार, कुछ होगा, ये करेंगे वो करेंगे। फिर करते करते हम एक दिन बैठ के मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ऐसा उसका मीटर अलग होता है, एकदम मिलता ही नहीं। तो करते करते हट से मैं गा दिया गाना, ट्यून किया। फिर जब ट्यून किया मुखड़ा जब बन गया, मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया, अभी अंतर तुमको ट्यून में लिखना पड़ेगा। अब वो फंसता है, अब वो घर से चले जाता है, सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे ट्यून में लिखना पड़ेगा। फिर फोन करते क्या है यार जो लिखा था, उन्होंने नहीं तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, अभी तुमको मीटर में करेक्ट मीटर में लिखने पड़ेगा। फिर वो ध्यान से वो करते रहते करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है।
0: कुछ ना कुछ भाई बहुत बड़ा कुछ बना के दिया इन दोनों जीनियस बंदों ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इनके कॉम्बिनेशन का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं आंधी फिल्म से। दो और जीनियस लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: 89.6
2: It's hot.

0: बाकी के म्यूजिशियंस म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे और पंचम ऑब्जेक्ट्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप आरडी बर्मन स्पेशल ऑन पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ऑब्जेक्ट्स लाइक दो ग्लास खड़का दिए, टेबल उठा के बजा दिए, सैंड पेपर से आवाज निकाल ली। इनकी वैरायटी और रेंज इतनी वास्ट थी, इसका कोई और छोर ही नहीं था। मतलब एक तरफ ये बंदा कैबरे सॉन्ग्स बना रहा है, दूसरी तरफ अमर प्रेम जैसी एल्बम। सुनिए इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में एक बार आरडी बर्मन ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: अमर प्रेम का तो बहुत, वो भी और एक पिक्चर थी जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने मिलके मिलजुल के काम किया। उसमें पिताजी ने भी काम किया। वो क्या था, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो पिताजी एक गाना गाया करते थे, बहुत पुराने गाना, उनका ही लिखा हुआ बंगाली बोल, मैं सुनाता हूँ। बैला बोई जा, अभी बोल बंगाली में, बैला बोई जा मतलब वक्त गुजरता जाए।
0: रैना बीती जाए, क्या ही खूबसूरत गाना है। सारे गाने इस फिल्म के इतने सुंदर हैं यार। और अभी हम इस फिल्म का वो गाना सुनेंगे जिसको सुन के अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत टेंशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो इसको सुन के हम सोचते हैं छोड़ो ये ना सोचो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
3: क्या नाम बताया आपने?
4: धारे गम पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
3: थोड़ा बहुत गा लेती
4: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
3: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
3: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
4: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट। पुरानी जींस पर आर डी बर्मन स्पेशल, चारू के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे, वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, मैंने नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाऊं। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की
0: है। ही तारीफ के काबिल भाई, इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये तो आपको पता है ना कि आरडी बर्मन अपनी टीनेज से ही अपने फादर एसडी बर्मन साहब को म्यूजिक कॉम्पोजिशन में असिस्ट करते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड बकायदा कुछ फिल्मों में इनको क्रेडिट भी दिया गया है, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, गाइड, तीन देवियाँ। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए इन्होंने अपने फादर के बारे में क्या किस्सा शेयर किया था।
1: पिताजी हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस आके हमारा एक छोटा सा बंगला था, वहाँ पे आके बैठते थे और चाय पीते थे और मुझे डांटते थे, यार क्या यार मोटा हो रहा है, चलते नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं। मतलब एक दिन वो आए, वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि पंचा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक उन्होंने कभी भी तारीफ नहीं की, तारीफ कर रहे हैं कुछ क्या। हमें नहीं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छा कर रहे हो। हर रोज मैं सुबह जाता हूँ, वहाँ पे कुछ लोग भी टहलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी टहलते रहते हैं, कुछ लड़कियाँ टहलती रहती है, कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि देखो एसडी बर्मन जा रहा है, तो मैं मन में सोचता था मेरा फैन है। आज कमाल हो गया, हमने क्या, हमने आज बोलने लगा ये देखो आरडी बर्मन का बाप जा रहा है। वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक कमाल का मोमेंट।
0: भाई मम्मियाँ तो अक्सर बच्चों की तारीफों में पुल बांध देती हैं, लेकिन पापा से तारीफ मिलना वाकई लाइफ का प्रेशियस मोमेंट है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल में ऑन मिर्ची।
2: तेरा

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आपको पता है आर डी बर्मन का पहले बचपन का निक नेम टुबलू रखा गया था, टुबलू। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर उनका नाम पंचम कैसे पड़ा, इस कहानी के ऐसे बहुत सारे वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि अशोक कुमार दादा मुनि जी ने नोटिस किया कि आरडी जब छोटे से बेबी थे तो ऐसे प प प प की साउंड बहुत निकालते थे, तो इनका नाम पंचम पड़ गया। वैसे एक बात तो है कि आरडी जब तक जिंदा थे ना, मन से बच्चे ही थे। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इस बारे में गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से बात की थी।
1: बच्चों की तरह महसूस कर लेना एक बहुत कमाल की खूबी है, और इन्होंने बच्चों के गाने जो दिए हैं, जैसे फिल्म थी मासूम जिसमें लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, इस तरह के गाने वो जब तक बच्चे की तरह आदमी महसूस ना कर सके, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से गाना कंपोज कर सकता है। परिचय में सारे के सारे गांवों को लेकर गाते चले, किताब का गाना आ आ ई ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, जब तक आदमी वो लड़कपन या वो स्कूल बॉयश मिजाज या टेम्परमेंट वो ना हो आदमी में, तब तक ये इस तरह के गाने कंपोज करना बड़ा मुश्किल काम है।
0: मुश्किल से कामों को बड़ा आसान सा बना लेते थे पंचम अपनी मासूमियत से। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನೆ.

जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।

0: है मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।